0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

कहते हैं कि पैसा रिश्तों से ऊपर नहीं होता, लेकिन देखा जाए रिश्तों से ऊपर हो ना हो, लेकिन लाइफ में पैसा जरूरी बहुत होता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि पैसे को लेकर रिश्ते बदल जाते हैं। दो लोग जो साथ चलने निकले हैं उनमें से एक अपने कदम कई बार पीछे खींच लेता है पैसे को देखकर। अगर आपके पास पैसा है तो आप समझदार कहलाते हैं। आपको फैसले लेने का घर में परिवार में भी अधिकार दे दिया जाता है। अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो फैमिली में भी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और कई बार अगर आपके पास पैसा ना हो तो आपको

लोगों की भी बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। अच्छे इलाज के लिए पैसा जरूरी है, अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा जरूरी है, परिवार आपकी फैमिली अच्छी तरह से रह पाए इसलिए पैसा जरूरी है, और आप अपनी लाइफ स्टाइल को खूबसूरत बना पाए इसलिए भी पैसा जरूरी है। सो यस, पैसा जरूरी तो है। आप ये नहीं कह सकते कि पैसा लाइफ में मैटर नहीं करता, या बिना पैसे के भी हम सिर्फ प्यार के सहारे जिंदगी जी लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आज के वक्त में तो खास कर ये बहुत मुश्किल है। आइए फिलहाल आगे चलते हैं, एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

बैक इट हैपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। लाइफ में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है कब होता है? जब ना कोई आपके साथ रहता है और ना ही वो पूरी तरह आपका साथ छोड़ता है। ना वो शख्स पूरी तरह दूर होता है और ना ही वो पूरी तरह आपके पास रहता है। जब उसका मन होगा वो आपसे बात करेगा, जब मन नहीं होगा वो शायद आपको अवॉइड भी करेगा। कभी वो आपकी केयर करेगा और कभी पूरी तरह अपने आप को आपसे डिटैच कर लेगा और आप उस रिश्ते में खुद को अटका हुआ पाते हैं। ना तो आप पूरी तरह उससे दूर जा पाते हैं और ना ही पूरी तरह उस शख्स के करीब आ पाते हैं। सो हाँ, ऐसे लोगों से, ऐसे इंसानों से अपने आप को बचाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस आपको जहां लगे कि आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है या इंसान अपने मूड के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आपसे बात कर रहा है, तो बस वहां से किनारा कर लेना ही सही है। फिलहाल चलिए आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक, इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेजु ब्रिस्वानी 1701 एम पर, और इट हैपेंस में आपके साथ मॉर्निंग की कुछ बेहतरीन वाइब्स हम और आप मिलकर शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों का नेचर होता है कि अगर उनको कोई हर्ट करे, परेशान करे, उनका रास्ता रोके या फिर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने से रोके, मतलब किसी भी तरह से उन्हें परेशान करने की कोशिश करे, तो भाई वो उसे पनिशमेंट देते हैं, वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। मैंने कहते सुना है बहुत लोगों को हम माफ नहीं कर पाते, उसने मेरे साथ ऐसा किया, जब तक मैं ऐसा ना कर लूँ उसके साथ तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। और कई तो और भी मजेदार बोलते हैं भाई कि मेरी तो आत्मा भटकेगी मरने के बाद भी अगर मैंने इससे बदला नहीं लिया तो। हो सकता है कि सामने वाले ने आपको इतना हर्ट किया है कि वाकई आप ऐसा सोच रहे हैं, बट माफ नहीं कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, बहुत समझदार होते हैं वो लोग जो ये समझ पाते हैं कि माफ ना करके और उसके बारे में सोच सोच के वो सबसे ज्यादा परेशान खुद को ही कर रहे हैं। तो भाई माफ कीजिए ताकि आप खुद जिंदगी में आगे बढ़ सकें। और रही उसको सजा देने की बात, तो माफ जरूर कीजिए, लेकिन उसने जो आपके साथ किया है उसे मत भूलिए, दोबारा मौका मत दीजिए, ठीक है जी। तो चलिए, इस बात का ख्याल रखिए और मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला गाना, एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस।

कुछ लोगों को ना ये वहम होता है कि वो जिस भी रिश्ते में हैं, जिस किसी के साथ हैं, उस इंसान को उनसे बेटर कोई मिलेगा नहीं और वो परफेक्ट है उसकी लाइफ में और वो अपना इकलौता वर्जन है। देखिए, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है कि आप अपना इकलौता वर्जन है, ये तो सही है, लेकिन आपके जैसा मिले ना मिले दूसरे इंसान को मिल तो जाएगा, है ना। क्योंकि लोगों को चलते चलते राह में, जिंदगी के रास्तों में लोग मिल ही जाते हैं, कोई किसी के लिए ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। तो इसलिए आप बस अपना बेस्ट दीजिए किसी भी रिश्ते में, ताकि जब आप उस रिश्ते से निकलें या हटें तो आपको अफसोस ना हो। बस आपको इतना पता हो कि भाई मेरे जैसे चाहे लाखों मिल जाएं, लेकिन मैं तो इस बंदे को नहीं मिलने वाला, है ना। हाँ, और ये वहम मत पालिए कि मेरे तरह जो है या इसको लाइफ में मेरे जाने के बाद कोई मिलेगा नहीं, है ना। तो वो तो भाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आप नहीं मिलेंगे ये पॉसिबल हो सकता है। क्या समझे। चलिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, हम प्ले करते हैं आपके लिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्तवानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

इट हैपेंस. जिंदगी का ये साथ, जिंदगी का ये खूबसूरत सफर इस वक्त सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर. कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जिंदगी जीने का सताक्षी सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, तो भाई आज सोचा आपके साथ ही इसे बांटा जाए. ये जवाब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और आई थिंक हर इंसान के लिए इस सवाल का जवाब अलग अलग होगा, है ना. जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका सबके लिए अलग अलग जवाब है. कोई फैमिली के साथ अपनी जिंदगी को खूबसूरत समझता है, तो कोई दोस्तों के साथ, और कोई अपने अकेलेपन या तन्हाई के साथ. किसी के लिए मोहब्बत खास हो सकती है, तो किसी के लिए उसका कोई हमराज. लेकिन मेरे लिए अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि जिंदगी जीने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है, तो इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि भाई किसी के साथ भी जिंदगी में ऐसा बिहेव मत कीजिए, ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि अगर कोई आपके साथ करे तो आपको नागवार गुजरे, आप पसंद ना करें, आप उससे रूठ जाए, आप उससे रिश्ते खत्म कर दें. यू नो, जब बात खुद पर आती है तो हम बहुत सीरियस लेते हैं उस चीज को, लेकिन जब बात दूसरों की होती है तो हम कई बार बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो शायद हमें खुद को मंजूर ना हो अगर हमारे साथ किया जाए. सो ख्याल रखिए और चलिए सताक्षी के साथ आगे बढ़ते हैं. एक और ट्रैक एंजॉय कीजिए मेरे साथ एंड स्टे ट्यून्ड. रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस.

फ्रेंड्स, ये था आज इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और बेहतरीन सा साथ। जी हाँ, कुछ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बातों के साथ ये सफर मेरा आज आपके साथ जुड़ा और आज की मॉर्निंग हमने साथ मिलकर एंजॉय भी की। भाई, आपको जरूर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। तो बस कल कुछ खास बातें होंगी, कुछ खास किस्से बिखरेंगे और हम और आप फिर से एक बार साथ चलेंगे, क्योंकि कल के दिन की शुरुआत भी तो हमें जबरदस्त करनी है ना। तो चलिए, आज के सफर से अब दीजिए मुझे विदा। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

तैयार करने लई 10 लाख रुपए का सौदा होया सी, जिस संबंध में हुण एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में जींद दे अंकित ते सिरसा दे अरुण महिंद्रू समेत पंजाब दे कई सीनियर अधिकारियों नूं भी नामजद किया गया है। ए मामला जसप्रीत उर्फ जसी नाम दे व्यक्ति दी शिकायत ते दर्ज होया, जो एक साइबर लैब विच काम करता है। जसप्रीत अनुसार उस मुख्यमंत्री नाल संबंधित विवादित वीडियो दी जांच ते विश्लेषण करन लई कुछ इलैक्ट्रॉनिक समग्री सौंपी गई सी। जांच तों बाद जसप्रीत ने कहा है कि वीडियो दी गुणवत्ता अजिही नहीं है कि उस ते कोई भरोसेयोग विज्ञानक सिट्टा कढ़िया जा सके जां उस दा पुख्ता डीपफेक टेस्ट किया जा सके। उसने यह भी साफ कर दिता है कि वह खुद अजिही कोई अधिकारित या प्रमाणित माहिर राय देने अधिकारित नहीं है। शिकायतकर्ता ने दोष लगाया है कि जदों उसने अधिकारियों की इच्छा अनुसार रिपोर्ट देने तो मना कर दिता तो कुछ सीनियर अधिकारियों ते होर लोगों ने उस ते दबाव पाया। उस अनुसार उसनू डराया धमकाया गया ते एक फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने लई मजबूर किया गया। जसप्रीत ने हरियाणा पुलिस नूं दस्सिया है कि इस घटना तो बाद उसका परिवार बहुत डरिया हुआ है ते ओ हुण पंजाब दी सुरक्षा पंजाब विच सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उसने अपनी ते अपने परिवार की जान नूं गंभीर खतरा दस्सदिया हरियाणा पुलिस तो तुरंत सुरक्षा की मांग की है। जिक्र योग है कि दो दिन पहला कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने दावा किया कि गुरुग्राम दी लैब ने मुख्यमंत्री दी वीडियो दी झूठी रिपोर्ट तैयार की है। पहला पुलिस ने लैब संचालक की गिरफ्तारी तो इनकार किया सी, पर हुण एफआईआर दर्ज होने नाल इस मामले ने सियासी रूप ले लिया। हालांकि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने वायरल वीडियो मामले में लगे सारे दोषियों को सिरे तो खारिज कर दिता है। आप आगुआ ने कहा आगुआ वालों कहा जा रहा है कि इस वीडियो में दिखाए जाने वाला व्यक्ति भगवंत मान नहीं बल्कि कोई होर है। उधर पंजाब कांग्रेस विच चल रही संगठनात्मक तब्दीलियां ते लीडरशिप बदला दियां चर्चावां विच चंडीगढ़ तो संसद मैंबर मनीष तिवारी ने अपनी नाराजगी खुल के जाहिर की है। मनीष तिवारी का कहना है कि पंजाब कांग्रेस दे ढांचे विच संभावित बदलावां संबंधी दिल्ली विच हुईयां मीटिंगां दौरान उन्हां नूं ना तां सद्दा दित्ता गया ना ही उन्हां तों राय ली गई है। मनीष तिवारी ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस दे भविख ते संगठनात्मक ढांचे बारे विचार वटांदरे लई लगभग 60 आगुआं नाल सलाह मशवरा किया गया, पर इस पूरी प्रक्रिया तो बाहर रखा गया। इस गल नूं लै के उन्होंने नाराजगी भी जताई अते पार्टी हाईकमान नूं नसीहत भी दित्ती। उन्होंने कहना है कि जे किसी सूबे विच संगठनात्मक बदलाव करने होण तां इह चोणां तों घट्टो घट 24 महीने पहला किते जाने चाहीदे हन तां जो नवीं टीम नूं कम करन लई पूरा समा मिल सके। तिवारी दे अनुसार मौजूदा समय पंजाब विधानसभा चोणां विच केवल कुछ ही महीने बाकी हन, अजिहे वेले वड्डियां तब्दीलियां करना पार्टी लई लाभकारी नहीं होवेगा। उन्होंने इशारा किया कि जे कांग्रेस ने संगठन विच कोई सुधार या पुनर्गठन करना सी तां एक कदम काफी पहला चुक्या जाना चाहिदा सी। हुण चोणां दे नेड़े आके कीते जाण वाले बदलावां नाल नवीं टीम नूं अपने आप नूं स्थापित करन अते कार्ज कुशलता दिखाउण विच लोड़िंदा समा नहीं मिलेगा। उधर दूजे पासे शिवसेना आगू ते होए हमले अते सोशल मीडिया ते शुरू हुई वीडियो वार मंखरो पुलिस कमिश्नर दफ्तर दे बाहर माहौल उस वेले बेहद तनावपूर्ण हो गया जदों रोहिंग सिंह अते शिवसेना आगू आमणे सामणे हो गए। दोहां धिरां वल्लों जोरदार नारेबाजी की गई अते एक दूजे नूं वेख के ललकारे मारे गए। स्थिति विगड़दी देख उथे तैनात भारी पुलिस फोर्स ने तुरंत एक्शन लिया अते दोहां धिरां विचाले कंध बण के उन्हां नूं वक कर दिता। पुलिस ने सियाणप वरतदिआं दोहां धिरां नूं शांत करवाया अते लुधियाणा नूं इक वड्डे टकराव तों बचा लिया। उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरदिंदर सिंह धामी ने महाराष्ट्र सरकार वालों तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब अबचल नगर नांदेड़ दे प्रबंध संबंधी 1956 दे कानून नूं रद्द करके नवां कानून बनाए जाण संबंधी फैसले ते गहरी चिंता प्रगटाई है। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा है कि तख्त श्री हजूर साहिब सिख कौम दे पंज तख्तां विचों एक महान पावन स्थान है, जिस दी मर्यादा प्रबंध ते धार्मिक खुद मुख्तियारी नाल जुड़े किसी भी फैसले तों पहलां सिख संस्थावां तख्त साहिबान दे जथेदार साहिबान सिखां दी नुमाइंदगी धार्मिक संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल सलाह मशवरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिख संस्थावां नूं कमजोर करने लई अजिहे कोझे यतन कर रही हैं जिस नूं सिख संगतां कदे प्रवान नहीं करनगियां। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा है कि मिली जानकारी अनुसार महाराष्ट्र सरकार दे मंत्रिमंडल वल्लों तख्त श्री हजूर साहिब प्रबंधकी बोर्ड संबंधी कानून पुराणा होण दा हवाला
ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ

बोर्ड विच सरकारी नामजद मैंबरां दी गिनती वधाउण अते सिख संस्थावां दे मैंबरां नूं घटाउण दा फैसला करन दा यतन कीता गया सी, जिस ते सिख संगतां वल्लों वड्डा विरोध करन मगरों सरकार पिछे हटी सी। उधर पंजाब तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड दे नगरसू विच गुरुद्वारा साहिब रुके नहिंग सिंह चौथे दिन पंजाब परत आए। गुरुद्वारे दा प्रबंध सेवादार बाबा बेअंत सिंह नूं वापस सौंप दिता गया। नहिंगा ने दस्सिया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी नाल मुलाकात कीती है ते ओह मीटिंग दौरान मिले भरोसे तों बाद वापस परत आए हन। गुरुद्वारे संबंधी विवाद आपसी गल्लबात ते प्रशासन दे सहयोग नाल शांतिपूर्वक हल हो गया। उत्तराखंड सरकार प्रशासन पुलिस धार्मिक आगुआ ने मिलकर हल लभण लई काम किते। हेमकुंड साहिब यात्रा बिना किसी रुकावट के आम वांग जारी रहेगी। इस दौरान सरकार पुलिस ने सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। स्थिति नूं संभालण लई पुलिस IT BP ते PSC दे कर्मचारी कई दिनों तो उत्थे तैनात सन। रुद्रप्रयाग प्रशासन इस मामले संबंधी समूह नाल लगातार गलबात कर रहा सी। अहम खबरों में बस इना ही। खबरों की बतेरी जानकारी सुझाव देने के लिए जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आईडी brisoni@brisoni.com फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो Brisoni 101.1। फिर हाजिर होवोंगे ताजा तरीन खबर लेकर। तक ले दो इजाजत, सत श्री अकाल।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਠ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ
3: ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
7: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
8: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी हां तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 एम ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हो चुका है जी शुरू ते इन्हां गल्लां नूं सुलगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का तुसी की खाणा तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो रेडियो ब्रसोनी 101 एम सर फेसबुक पेज अजीत ब्रसोनी @ brasoni.com साथ ही ईमेल आईडी है जरिया जेड़ा तुम चंगा लगता है अपना लो सा गलबात जरूर करो तो फटाफट जुड़ना शुरू करो मैं हूं ही वापिस होने कितने जाना थोड़ा गलबात जरूर करते रहना बस तुम जुड़ना ना भूलो हूं वापिस आई मैं तुम उन्होंने समा इन्होंने सोने जी कि इंजॉय करो।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love These Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love These Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसौनी 101 एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए। देखो शराब दी लत हुंदी है ना जेड़ी वह ना सिर्फ सेहत दे बहुत ज्यादा हानिकारक हुंदी है बल्कि शरीरिक मानसिक अते समाजिक जीवन नूं भी हौली हौली ना बर्बाद ही कर दिंदी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वी अजिहा होया है। बिल्कुल सही सुनिया तुसी, बॉलीवुड इंडस्ट्री विच अजिहे कई सितारे हैगे ने जिन्हां नूं शराब दी लत लग गई सी। इस बुरी आदत ने कई सारे एक्टर्स दा करियर हैगा ने जिहड़ा तबाह कर दिता सी ते कई कलाकारां दी जिंदगी नूं मुश्किल बना दिता सी। कुछ सितारियां ने इस लत तों बाहर निकल के अपनी जिंदगी सवारी ते कुछ इस दे शिकार बन के रह गए। तां अज मैं तुहानूं बॉलीवुड दे कुछ उहनां स्टार्स बारे दसूंगी जिन्हां दी शराब दी लत ने उहनां दे करियर अते जीवन ते बहुत ही ज्यादा डूंगा असर पाया सी। केड़े केड़े ने इस लिस्ट विच करदे उन्हां बारे गल, पर पहला सुनो एक गीत।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए दासरी सी ना मैं थानू के केड़े केड़े अजे सितारे है जिन्हां दी जिंदगी शराब के नशे ने खराब करती सी। इस दे विच सब तो पहला नाम यो यो हनी सिंह दा हुंदा है। देखो बॉलीवुड ते पंजाबी सिंगर यो यो हनी सिंह दा शराब ते ड्रग दी लत नाल जूझना उन्हां दे करियर दा सब तो चुनौतीपूर्ण दौर रहा सी, जिस दे कारण साल 2012 तो 2022 दे विचकार ना म्यूजिक इंडस्ट्री तो लगभग गायब ही हो गए सी। उन्हां ने खुद इस गल नूं स्वीकारिया हैगा है कि उह शराब ते नशीली दवाइयां विच बुरी तरह दे नाल डुब चुके सी, जिस नाल जिस तों उन्हां नूं निकलण विच लगभग 8 साल का समा लग गया सीगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बरसाने 107.4 संदेश अलग दिन बने हुए। इस लिस्ट विच अगला जेड़ा नाम हैगा वो है जी मनीषा कोइराला दा। ता मनीषा कोइराला ने ना एक तो एक फिल्मा विच अपनी एक्टिंग दा जलवा बिखेरिया है। उन्होंने बहुत सोहनी अदाकारा की थी, तो बहुत ही सोहनी अदाकारा एक्ट्रेस है अदाकारा हैगी है, बहुत ही वधिया एक्टिंग हर फिल्म दे विच कीती है। पर उन्होंने शराब की लत नाल बहुत लंबा संघर्ष किया। मनीषा ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्हां दी जिंदगी शराब की लत की वजह नाल पूरी तरह दे नाल बिखर गई सी। इस लत ने ना सिर्फ उन्होंने सेहत नूं नुकसान पहुंचाया बल्कि उन्होंने करियर ते निजी जीवन ते भी बहुत ही ज्यादा डूंघा असर पाया सी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हाँ जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन वन एम ते चार छे संदेश अलग दिन उससे बने हुए। अगला जेड़ा नाम है गया ना उसनों सुन के तुसी हैरान जरूर हो जाओगे क्योंकि वो पट खानदान दे नाल जुड़े हुए है। आलिया पट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना ते ना है शाहीन भट्ट, नाम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे पर यह सच है। पूजा भट्ट नूं शराब की लत लग गई सी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्होंने जिंदगी शराब की लत की वजह नाल बुरी तरह के नाल प्रभावित भी हुई सी जिस तों निकलण दे विच उन्हां नूं काफी टाइम लग्या सी।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA, from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane, with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ
3: ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
7: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store where cards, prepaid charge cards, fancy jewelry, bangles, giftware bhi uplabdh hai. For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balaclava Street, Woolen Gabba. Open daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store well known for its quality service and reasonable

एक्सपर्ट्स, घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसवानी वंसर वाले हम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आल तुसी बने हुए हो। इस लिस्ट दे विच अगला नाम बहुत ही खूबसूरत अदाकारा दा है, बहुत कई साल पुराने 80s से 1780s दे जिहड़े दौर दी एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, उन्हों का नाम है इस लिस्ट विच शामिल। बॉलीवुड दी दिग्गज एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, पर शराब दी लत ने ना उन्होंने भी काफी नुकसान पहुंचाया है, इस करके उन्होंने करियर ही है जो बर्बाद हो गया सी। पता हो परवीन बॉबी अपने

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
3: मकामा नाल पक ठक सहज सुभा नू रख।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वन सर वन एम से जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस लिस्ट विच एक बहुत ही दिग्गज नाम भी है जो साढ़े विचकार नहीं है कि पर नाम होना था है। नाम है जी धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया है कि पीन की लत के कारण उन्होंने करियर के गिरावट जरूर आई है। फिर फरदीन खान का नाम भी इस शामिल है। ड्रग्स और शराब की लत के कारण फरदीन खान नू रीहैब जाना पै गया से जिस नाल उन्होंने करियर नू झटका लग्या। प्रतीक बब्बर नाल भी अजिहा ही होया। राज बब्बर और समिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर का करियर भी नशे की लत करके ही प्रभावित होया है। तो यह सारे नाम है जो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट में शामिल है।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: in the house.
1: देखो जिन्ने भी नाम मैं हुण दसे हैगे ना वो नो डाउट बहुत ही वधिया कलाकार ने सारे दे सारे बहुत ही ज्यादा शानदार एक्टर्स हैगे ने। तुहानू कौन सब तो ज्यादा पसंद है ते किसदा तुहानू लगता है कि वो जिहड़ा समा उहनां दा खराब गया हैगा वो नहीं जाना चाहीदा सी ते जो शराब दे नशे दे विच ना डुबदे ते उस टाइम नूं ना बर्बाद करदे तां अज होर ज्यादा उपर होणे सी। दसो जरूर तुसी जुड़ो साडे नाल रेडियो ब्रिसवानी 107.1 FM साडे फेसबुक पेज है जिते ब्रिसवानी@ब्रिसवानी.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जिहड़ा वी तुहानू चंगा लगदा है तुसी अपना उपर साडे नाल पता जरूर करते रहा करो। बाकी मैं तां तुहानू यही कहना है जी कि कल करदे हां मुलाकात। रखो अपना ख्याल। सत श्री अकाल।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी

0: फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी हाँ, तो प्रोग्राम आ गया है, मैं भी आ गई हूँ और वक्त हो गया है कि आप भी अच्छे से आ जाइए। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करते हुए सुनिए, अगर आप कहीं बैठे हो तो बैठते हुए सुनिए, और अगर आप स्पेशली हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हो तो फिर वो भी कीजिए। सो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इवनिंग वाइब जो है वो बहुत ही खास है हमारे लिए, क्योंकि हम आपके साथ इतनी सारी गपशप करते हैं कि मुझे तो मज़ा आ जाता है, एंड आई होप आप लोगों को भी मज़ा आता होगा। और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत इवनिंग वाइब की होती है हमेशा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थी रिचुअल के साथ, और वो है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी की जद्दोजहद के लिए ये आपको प्रिपेयर करता है, आपको काम बनाता है, फोकस बनाता है। आप किसी भी चीज़ का गुस्सा किसी और पर ना निकाल दो, ये सब सुनिश्चित करता है, और ये है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज यानी कि लंबी गहरी सांसें। आप इनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि जो इनमें पावर है ना वो सच में किसी भी चीज़ में नहीं है। ये आपको मेंटली एंड फिजिकली भी हेल्दी रखती है। तो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा अच्छा फील करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, और पहला गाना आपको सुनाते हैं। और वो पहला गाना जो होने वाला है वो बहुत ही दिलदारी वाला होने वाला है, क्योंकि उसका नाम ही दिलदारा है। आपको पता है इवनिंग वाइब अच्छे गानों के बिना अधूरा है, और हम कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते, हम हर चीज को कंप्लीट करते हैं, पीरियड। जी हाँ, यहाँ पर दिलदारा आपके लिए, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, तो गाना तो बहुत जबरदस्त था, एकदम वाइब वाला था। और वाइब वाले गाने चाहिए भाई, इवनिंग वाइब। हमारे तो प्रोग्राम में के नाम में ही वाइब आता है, तो वाइब हम कैसे नहीं बनाएंगे दोस्तों। इसी के साथ प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब जरा मौसम भी वाइब बना रहा है या नहीं बना रहा है वो भी जरा जान लेते हैं, क्योंकि मौसम कभी कभी हमारे एकदम ऑपोजिट चलता है। मतलब हम जाना चाहते हैं नॉर्थ तो मौसम जाना चाहता है साउथ, हम जाना चाहते हैं ईस्ट तो मौसम जाना चाहता है वेस्ट। सो इस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली हम अपने आप को, अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हैं, मौसम नहीं करता। जी हाँ, मौसम बिल्कुल नहीं करेगा। सो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मौसम के बारे में। टेम्परेचर मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस रहा, और अभी की अगर बात की जाए तो 19.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 19 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, और वहीं ये है दिन की बात। रात की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे तापमान में। 50% चांसेस ऑफ बारिश मैंने पहले ही बता दिया था, और इसके हिसाब से आप मुझे बताइए कि आपके यहां बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि सवाल यही है। सवाल ये नहीं है कि कितनी बारिश हो रही है, सवाल ये है कि मेरे किन किन लिसनर्स के वहां पर बारिश हो रही है। जी हाँ, सो जरूर बताइएगा। इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट। और अब जरा चलते हैं फ्राइडे की ओर, जहां पर 70% चांसेस है बारिश होने के और 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिन की। जी हाँ, 20 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट जो है वो आप देखेंगे, और 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रहने वाला है। और ये है फ्राइडे का मौसम। सैटरडे की बात करें तो अगेन 70% चांसेस बारिश विद 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मैंने आपको कह दिया था पिछले दो दिन पहले ही कि जितनी धूप आप लेना चाहते हो वो ले लो, क्योंकि अब जो है वो आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। बारिश जो है वो आपके और आपकी धूप के बीच में, आपके और आपकी विटामिन डी के बीच में रुकावट बन सकती है। लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी है तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि अब आपको अच्छे से विटामिन सी कुछ दिन बाद ही मिलने वाली, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि मुझे बारिश बारिश बारिश बारिश ही दिख रही है। किसी दिन थोड़ी ज्यादा, किसी दिन थोड़ी कम, लेकिन बारिश दिख जरूर रही है। और अगर बारिश नहीं भी होगी तो बादल तो होने ही वाले हैं। सो ऑफकोर्स हमें धूप से मतलब है, और धूप यहाँ पर इतने अच्छे से नजर नहीं आ रही है। थोड़े बहुत बीच में आपको चमकता हुआ सूरज दिख सकता है, बट वैसी वाली धूप जो हमको ठंड में, उस ठंड को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है, वैसी नहीं होगी। सो इसके लिए रेडी रहिए, और आप मुझे बताइए कि आपके वहां पर हो रही है बारिश या नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਅਨੁਜ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾ ਲਾਇਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਨਾ, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
14: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
13: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
14: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
13: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
14: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
15: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
16: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
17: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई, मौसम का हालचाल भी बता दिया, आज का भी अगले दो दिन का भी। अब जरा आपकी फरमाइशों की तरफ रुख किया जाए। वेल ऑफ कोर्स किया जाए, बिल्कुल किया जाए। और यहाँ पर फरमाइशों से मेरा मतलब है जो पसंदीदा गाने, जो अजीज गाने हैं आपके, वो आप हमारे प्रोग्राम में फरमाइश करते हो, रेकमेंड करते हो, वो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और कहीं ना कहीं वही तो हमारे इस प्रोग्राम की असली वाइब भी है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से अपनी फेवरेट गाने फरमाइश करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, या किसी को डेडिकेट करने के लिए आपको करना क्या है? आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, और वो नंबर है +9182888-717701। आई रिपीट, +9182888-717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं अपनी फरमाइश हमें, हमारी तरफ से एक और मजेदार सा गाना आप सबके लिए।

मैं बात करने वाली हूँ, आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी, एआई और बहुत सारी ऐसी चीजों की जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड होकर चल रही हैं, उनकी बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ, मैं तारीफ नहीं करती हूँ, लेकिन जब वो किसी की लाइफ बचाने के काम आती हैं तब मुझे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, तब मैं टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी फैन हो जाती हूँ। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा काम है हमारी जिंदगी को आसान बनाना, लेकिन जब वो किसी की जान बचाने या किसी की जिंदगी को अच्छा बनाने में हेल्प करती है तो मुझे टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बेटर लगती है। सो यहाँ पर जो मैं इंसिडेंट आपको बताने वाली हूँ ये इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, एक बंदा जिसने टेस्ला खरीदी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं यहाँ पे टेस्ला को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ, नो, टेस्ला ने हमें कोई पैसे नहीं दिए हैं, सो टेस्ला की प्रमोशन हम नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ टेक्नोलॉजी की प्रमोशन कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रही हूँ। सो यहाँ पर एक बंदा जो कि लिटरली अपनी गाड़ी में जा रहा था और उसको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी गाड़ी उसको खुद ही हॉस्पिटल लेकर चली जाती है, और इनफैक्ट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी गाड़ी से ही यानी कि टेस्ला से ही डॉक्टर्स को खबर कर दी जाती है कि उस बंदे को जो है वो हार्ट अटैक आ गया और उसको जल्दी इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डॉक्टर्स वहां रेडी हो जाते हैं और उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है और वो बच जाता है, वहां पे एक जिंदगी बच जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो ये डिसीजन जो है वो डेफिनेटली जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। नाउ मैं हमेशा कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी, जब मैं न्यूरोलिंक की बात करती हूँ, इसीलिए जब वो किसी की लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करता है या फिर जितनी भी टेक्नोलॉजी जो कि किसी की लाइफ को बेसिकली अच्छा बना रही है या फिर जो हेल्दी नहीं है इंसान, जो किसी वजह से अपनी जिंदगी में अच्छे से जी नहीं पा रहा है, अपनी बॉडी को पूरी अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है, जब टेक्नोलॉजी ऐसे लोगों की हेल्प करती है ना, आई जस्ट लव इट। पर यहां देखिए, मतलब एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि लिटरली ले गई बंदे को हॉस्पिटल, क्योंकि उसे लगा कि नहीं, ये जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है वो कुछ ठीक फील नहीं कर रहा है, और उसके जो बेटा था, वो जो बंदे का जो बेटा था, उसने ऐप से ही टेस्ला को जो है एक कमांड दी, और वो टेस्ला ने वो कमांड सुनी भी, टेस्ला ने आगे हॉस्पिटल में कमांड दी कि ऐसे करके एक बंदा है जिसको हार्ट अटैक आ गया है, उसको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, तो डॉक्टर्स आप प्रिपेयर हो जाइए। क्या बात है, क्या बात है। अब फील होता है कि हम अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, अच्छे वर्ल्ड में रह रहे हैं। मतलब हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरों का सर फोड़ने के लिए कर रहे हैं, वो वाली टेक्नोलॉजी तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर यही टेक्नोलॉजी जब किसी की जिंदगी बचा पा रही है, दैट्स व्हेन वी लव टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हेन वी लव मॉडर्नाइजेशन। What do you think about it? जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे इस प्रोग्राम की पहली फरमाइश प्ले करने का। मतलब एक ऐसा गाना जो कि फरमाइश किया गया है हमारी बहुत ही खास लिसनर पूजा जी की तरफ से। जिस गाने को उन्होंने फरमाइश किया है वो है मुदे मिठे लोका अंदर। जी हाँ, मुदे मिठे लोका अंदर। अब क्या है ये गाना? सूफी है ये गाना, इतना तो मैं आपको कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा जी, हमेशा की तरह जबरदस्त और यूनिक फरमाइशें करने के लिए। जी हाँ, ये गाना हमने नहीं सुना है पहले डेफिनेटली, और हम इसे डेफिनेटली सुनना पसंद करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और बिना देर किए आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उत्ते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन क्वाइन कहिंदे हां। अपने बिन क्वाइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
4: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज निविया के साथ। दोस्तों आज नहीं बल्कि आज कहूंगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आज ही मैंने कुछ देखा है। आज ही सोशल मीडिया पर सुबह सुबह मैंने कुछ देखा है जब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, और वहां पर एकदम से एक बंदा आता है और वो कहता है कि आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट किया है। एंड आई वॉज लाइक या आई एम डूइंग इट राइट नाउ, मतलब वो वीडियो चल रही थी बट मैं अपने दिमाग से भी अपने आप से बात कर रही थी। वो कह रहा था कि आज आपने ब्रेकफास्ट किया, एंड आई वॉज लाइक या आई एम डूइंग इट राइट नाउ। मुझे लगा था कुछ ऐसा बोलने वाले हैं कि या ब्रेकफास्ट इज गुड, हर किसी को ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ब्रेकफास्ट इज द वेरी फर्स्ट मील जो कि आप सोने के बाद करते हो, उठने के बाद करते हो, जागने के बाद करते हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, क्योंकि पूरी रात आपकी बॉडी स्टार्व करती है और उसके बाद आपको वो खाना मिलता है। बट नो, उस बंदे ने कुछ अलग ही बताया, और वो जो अलग बताया वो मुझे आपको भी बताना है। जी हाँ दोस्तों, वो मुझे आपको भी बताना है। अब उसने क्या बताया, उसने बोला कि अगर आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट किया है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। आप लोग बोलोगे कि है ब्रेकफास्ट इज स्कैम, बट व्हाई? एक्सप्लेन निविया एक्सप्लेन. चलिए ठीक है, आप बोल रहे हो तो एक्सप्लेन करना तो बनता है, और अगर आप नहीं भी बोलते तो भी मैं करने ही वाली थी. इंजिया. सो यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि ये जो 3 meals a day वाला जो ये जो सिचुएशन है, ये जो सिनेरियो शुरू किया गया है, ये जो 3 meals a day वाला जो काम हम करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, और जो यू नो आइडियोलॉजी हम फॉलो करते हैं, इट इज वेरी वेरी न्यू. एंड व्हेन आई से न्यू, वो बंदा कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा न्यू इसलिए है क्योंकि हमारे जो इंसिस्टर्स थे, एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द इंसिस्टर्स के इंसिस्टर्स के इंसिस्टर्स के इंसिस्टर, वो लिटरली एक हफ्ते में 3 बार भी खाते थे ना, वो बड़ी बात होती थी. उनकी बॉडी हेल्दी रहती थी, वो बहुत लेजी नहीं थे, वो बहुत ज्यादा फास्ट थे, बहुत ही ज्यादा फुर्तीले थे, वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होते थे, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी. क्योंकि बेसिकली जब हमारा बॉडी, जब हमारी बॉडी जो है वो फास्टिंग जोन में जाती है, तो वो खुद ही अपने आप को हील करना शुरू कर देती है. या एग्जैक्टली. एंड जी हाँ दोस्तों, और अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आयुर्वेदा और इनफैक्ट चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी, TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी ये कहा जाता है कि अगर आपकी बॉडी किसी की भी बॉडी किसी भी टर्मिनल इलनेस से भी गुजर रही है, तो उसको भी फास्टिंग जोन में ले जाकर ठीक किया जा सकता है, हील किया जा सकता है. जी हाँ, अब आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी बॉडी जब हम सो जाते हैं उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो हील होती है, और उसके बाद क्या होता है? वेल ऑफ कोर्स उसके बाद हम जो है सुबह बहुत ही अच्छा फील करते हैं, और ऐसा अच्छा हम पूरा दिन फील नहीं करते हैं. जो हम सुबह सुबह फील करते हैं ना, वैसा सा अच्छा हमें ऐसे बिल्कुल फील नहीं होता. हमें हल्का फील होता है, हमें ऐसा फील होता है कि ओह लाइक रियली इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द स्लीप, इट्स बिकॉज ऑफ कि हमारे जो स्टेम सेल्स हैं, हमारे जो सेल्स हैं, वो लिटरली हीलिंग जोन में चले जाते हैं. वो रात में ये देखते हैं कि ओके कौन सी जगह को हील होने की जरूरत है, और वो वहां जाकर उसे हील करते हैं. क्योंकि हम अपनी बॉडी को किसी भी तरह के खाना खाने की एक्टिविटी में नहीं डाल रहे. उनको डाइजेशन पे काम नहीं करना है, उनको खाना पचाने के लिए काम नहीं करना है, उनको ये सारी चीजों के लिए काम नहीं करना है, उनको बॉडी की हीलिंग के लिए काम करना है. अब हीलिंग के लिए तो तब टाइम मिलेगा ना जब हम खाना खाने से फुर्सत देंगे अपनी बॉडी को, और वो खाना ब्रेक डाउन करने के चक्कर में, डाइजेशन के चक्कर में हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट काम करने के लायक बचे. सो फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ये फास्टिंग तो पहले से ही थी, लेकिन हम लोग ये 3 meals a day वाले साइकिल में पहुंचे कैसे? वेल ऑफ कोर्स उस बंदे ने ये भी बताया, और फिर मैंने उस बंदे की बात नहीं मानी, मैंने उसके बारे में और भी रिसर्च किया, एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट. लेकिन पहले हम आपको सुनाएंगे एक और जबरदस्त सा गाना.

जी हाँ दोस्तों, तो बात हो रही है यहाँ पर 3 meals a day साइकिल की। और जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी और तभी सोशल मीडिया चलाते वक्त मेरे सामने एक वीडियो आती है जिसमें एक बंदा बोलता है कि यू नो व्हाट, अगर आपने, सबसे पहले तो वो ये कहता है कि आपने ब्रेकफास्ट किया ना। आई वाज लाइक या आई एम डूइंग माई ब्रेकफास्ट। ऑफकोर्स वो सुन नहीं सकते, बट मैं अपने आप से बात कर रही थी। बट देन ही यू नो स्टार्टर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक कि यू नो व्हाट, 3 days a meal इज अ स्कैम। इट्स अ स्कैम जो कि आपको लेजी अनहेल्दी बनाने के लिए बना है। एंड आई वाज लाइक व्हाट व्हाट, मतलब मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा भुक्कड़ हूँ, मुझे खाना इतना पसंद है, और ऐसे में कोई मुझे बोल रहा है कि हमें 3 बार भी खाना नहीं खाना चाहिए, मैं तो 5 बार खा लेती हूँ। सो ऐसे में कितनी गड़बड़ है। फिर मैंने आगे सुनने की कोशिश की एंड देन उसने जो बोला वो कहीं ना कहीं सेंस बना रहा था। एंड आई वाज लाइक या यू आर काइंड ऑफ ट्रू। बट उस बंदे ने एक बात बोली जो कि मुझे थोड़ी सी डाइसी लगी। एंड आई वाज लाइक नो नो नो नो नो, अब तो मुझे नीचे, लाइक आई हैव टू गो इन अ रैबिट होल एंड आई हैव टू डू माई रिसर्च एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट ऑन माई प्रोग्राम, बिकॉज आई नो आप लोग भी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सुनते हो, आधी से ज्यादा चीजों पर आप विश्वास कर लेते हो विदाउट एनी रिसर्च। सो यहां पर वो बंदा बोल रहा था कि कैसे हमारी बॉडी जो है, जब वो स्टार्विंग मोड पे जाती है, जब वो खाना नहीं खाती, फास्टिंग मोड पर जाती है, तो वो हील होती है, विच इज वेरी वेरी ट्रू। इसमें कोई भी शक नहीं है, फास्टिंग इज रियली गुड फॉर हेल्थ। लेकिन उस बंदे ने एक और चीज बोली और वो थी कि ये 3 meals a day का जो साइकिल है, जो ये स्कैम है, ये शुरू किया रॉकफेलर फैमिली ने। जी हाँ, रॉकफेलर फैमिली फाउंडेशन ने। एंड आई वाज लाइक या, बिकॉज आई नो रॉकफेलर फैमिली इज वन ऑफ द richest फैमिली एंड दे आर नॉट द न्यू रिच फैमिली, दे आर वेरी वेरी ओल्ड रिच फैमिली। सो ऑफकोर्स उनकी जो है वो बहुत सारी चीजें जो वो आती है, आज भी इनकी वेल्थ जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एलन मस्क है। जी हाँ, आप खुद सोच सकते हो। सो उस बंदे ने कहा कि रॉकफेलर फैमिली का जो है वो स्कैम था, वो आपको इस साइकिल में डालना चाहता था ताकि आप अनहेल्दी हो जाओ, आप इस चीज में जो है वो अपने आप को इंडल्ज कर लो कि खाना है, अच्छा है खाना और इसको खाना चाहिए और 3 बार खाना चाहिए दिन में, ये सब ये रॉकफेलर फैमिली ने किया। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि फिर मुझे मेरी रिसर्च करनी थी और मैंने उसकी रिसर्च भी की, बट देन आई केम टू नो कि इट्स जस्ट अ इंटरनेट मिथ। जी हाँ, इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फास्टिंग इज गुड फॉर योर बॉडी, फास्टिंग इज डेफिनेटली वेरी गुड फॉर योर बॉडी, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि रॉकफेलर फैमिली ने ये मिथ शुरू नहीं किया, ये इंटरनेट मिथ है, वेरी पॉपुलर वन एट दैट, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसे शुरू किया, बट ऐसा नहीं है, ये उससे बहुत पहले ही शुरू हो गया था। जी हाँ, और ये शुरू इसलिए हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब लोगों को ज्यादा काम करना पड़ा, जब लोग पूरा पूरा दिन काम करते थे तो उन्हें खाना भी चाहिए होता था, तो उस रेवोल्यूशन की वजह से जो है उनकी बॉडी के लिए ऐसी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। एंड वैसे उनको खुद ही जो है वो लग रहा था कि उन्हें ज्यादा भूख लग रही है, तो उन्हें एटलीस्ट 3 बार तो खाना पड़ेगा सो दैट वो ये सारा का सारा काम कर पाए। पहले के लोगों को, एंड व्हेन द पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट आर एंसेस्टर्स यूज्ड टू लिटरली सिर्फ उनको खाना ढूंढने का काम होता था। जी हाँ, अपने आप को ठीक रखने का काम होता था, ना पढ़ाई, ना नौकरी, ना छोकरी, नो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सो ऐसे में जो है उनके लिए 3 वक्त का खाना पूरे हफ्ते में भी काफी होता था, लेकिन अब वाला टाइम डिफरेंट है, हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपको सिर्फ फिजिकल वर्क के लिए खाने की जरूरत होती है, इवन मेंटल वर्क इज वेरी एग्जॉस्टिंग एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन। बट द थिंग या देयर इज अ कैच जो कि आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से, कि आप अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में भी बात करें तो तब भी ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी हमारा 3 meals a day वाला जो साइकिल है That is very abnormal. मतलब हमें ये खाना नहीं चाहिए। हाँ, of course, हम 3 meal पे सर्वाइव नहीं कर सकते पूरे हफ्ते में, लेकिन ये जो 3 meals a day वाला सिस्टम है ये भी एवोल्यूशन के हिसाब से भी abnormal है। हम इससे काफी कम खा सकते हैं और काफी कम खाने के साथ हम काफी हेल्दी रह सकते हैं। एंड आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है फिर हम कल से ही व्रत शुरू कर देते, कल से ही फास्टिंग शुरू कर देते हैं। नो, क्योंकि हमारी बॉडी किसी चीज की यूज टू हो जाती है, तो हमें उस स्विच को करने के लिए काफी अच्छे से, मतलब पहले अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से पूछना पड़ता है एंड डेफिनेटली जो है फिर उसके बाद ही हमें किसी चीज में आगे जाना चाहिए। बट द थिंग इज कि यार, रॉकफेलर फाउंडेशन फैमिली ने नहीं किया था, ऑल्दो दे फंडेड सम न्यूट्रिशनल स्टडीज इन 1940s टू इम्प्रूव विटामिन इनटेक इन इम्प्रोवाइज्ड कम्युनिटीज, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये थ्री
मील्स अ डे वाला साइकिल शुरू किया था. सो इट्स नॉट अ रॉकफेलर फैमिली बट इट्स अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसने ये खुद ही जो है वो शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि उनको तीन वक्त तो खाना पड़ेगा इस पूरे के पूरे काम को करने के लिए. बट या तीन वक्त अगर आप नहीं भी खाओगे, मैं नहीं भी खाऊंगी तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो लिटरली कम खाने से ज्यादा हेल्दी रहती है. और ये मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग पहले ही कह चुके हैं. सो या आप खुद देखिए क्या आपको भी फास्टिंग करनी है या नहीं करनी है. बट यू नो व्हाट, जैसे मैंने कहा कि ये स्विच जो है वो इजी नहीं है, सो यू नीड टू आस्क योर हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. बट या फूड इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर बॉडी एंड दैट्स अ यू नो फैक्ट. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: यार राहुल,
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
4: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिन कॉइन कहते हैं. अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें.
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
7: It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों इसी के साथ अब बर्थडे विश कर लेते हैं हमारी फेवरेट एक्ट्रेस को, जो कि लिटरली दिलों पर राज करती आ रही है लेट 90s एंड अर्ली 2000s में. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी फेवरेट दी करिश्मा कपूर. जी हाँ, कपूर खानदान की वो पहली बेटी जिसने फिल्मों में आने का फैसला किया. अब उनके लिए जर्नी जो है वो आसान नहीं रही है. जी हाँ, क्योंकि इससे पहले कपूर खानदान की किसी भी बेटी ने कभी भी फिल्मों में काम नहीं किया था. लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपने दादाजी यानी कि राज कपूर को मनाया, अपने पिताजी को मनाया और फिर रूल भी किया उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री पे, आज भी इनकी स्माइल, इनकी आंखें, इनकी यू नो वो जो काया है वो सब पे लोग फिदा हैं. मतलब इनकी फैशन सेंस, इनका वो ऑरा, एवरीथिंग इज जस्ट वे टू गुड. जी हाँ, सो सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद करिश्मा कपूर जी. आपको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से, मैं इतना ही कहूंगी कि आपके फैंस की कमी इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है. और मुझे आज भी याद है जब मैं आपको देखा करती थी, आपकी ड्रेसेस, यू नो, एंड I have to say कि she has one of the best figures in Bollywood. मतलब जो body structure है करिश्मा कपूर का, वो हमेशा से वैसा रहा, आज भी वो इतनी fit है. Like you can literally look at her and be inspired. And आपको ऐसा लगेगा कि वाह, मतलब दो बच्चों की माँ है ये, पर फिर भी like look at her, she is so fit, she is so healthy and she is so vibrant still. And yeah, congratulations. And यहाँ पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे. हम यही कहेंगे कि फिर से वापसी कीजिए, अच्छे से वापसी कीजिए, क्योंकि आपके फैंस आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे. सो प्लीज वापसी कीजिए. एंड इसी के साथ ये साल आपके लिए बहुत ही मजेदार, हेल्दी, वेल्दी और सारी अच्छी चीजों से भरा रहे. यहाँ पर ये एक गाना अब ऑफकोर्स करिश्मा जी का यहाँ पर प्ले करेंगे हम, और ये गाना जो है कोई नॉर्मल गाना नहीं है. ऐसे तो उनका बर्थडे है तो हमें कोई बहुत ही हैप्पी हैप्पी सॉन्ग प्ले करना चाहिए उनका, जो कि बहुत सारे हैं, बट आई डोंट नो, ये गाना जो है वो कल से मेरे दिमाग में चल रहा है. सो करिश्मा कपूर जी का ही ये गाना, तो मैंने सोचा कि इसी से की जाए उनके बर्थडे की शुरुआत, यहाँ पर ये गाना.

के साथ अब सीधा रुख करते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। खबरों में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि अब वक्त हो गया उसके बारे में बात करने का। अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी, फनी फनी बातें भी होती रहेंगी, लेकिन पहले थोड़ा रियलिटी चेक ले लें क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईरान से। इस्माइल बकाई बोले, ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने नेटो के महासचिव मार्क रूटे के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नेटो महासचिव का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि नेटो ने संयुक्त राष्ट्र के एक संप्रभु सदस्य देश के खिलाफ एक अवैध युद्ध में भाग लिया। उन्होंने एक्स पर जारी अपने बयान के साथ मार्क रूटे के फोकस न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नेटो के महासचिव को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इटली में स्थित अमेरिकी अड्डे से लगभग 500 अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी थी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इसी दौरान एक दूसरे यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी के हवाई अड्डे पर यात्री विमानों की उड़ानों को कम करना पड़ा क्योंकि उस हवाई अड्डे का उपयोग ईंधन भरने की सुविधा के रूप में किया जा रहा था। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फरवरी के आखिर में शुरू की गई सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था। इस्माइल बकाई का कहना है कि नेटो और उसके वो सदस्य देश जिन्होंने इसमें भाग लिया उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, वहीं एक बहुत ही दुखद खबर है जो कि वेनेजुएला से आई है और शायद इसके बारे में अभी तक आपको पता चल गया होगा। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में बुधवार को भीषण भूकंप आया है और इसमें हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। कराकास में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर दो बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था जबकि दूसरा 7.5 तीव्रता का था। जी हाँ, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि इसमें हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी भी नंबर्स जो हैं वो दिए नहीं गए हैं वहां की अथॉरिटीज के द्वारा, तो पता नहीं है, लेकिन हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका आप खुद ही सोच सकते हो कितना भयानक ये भूकंप था। अब इसके लिए बहुत सारे देशों के लीडर्स ने कुछ कुछ जो है वो कहा है। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये जानते हैं। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही से मुझे गहरा दुख है। भारत के लोगों की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति और खासकर उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि हम घायलों के जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। वहीं प्रधानमंत्री ने, पीएम मोदी ने तो बोल दिया है, लेकिन यहां पर ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है जिन्होंने लिटरली मदुरो जो कि प्रेसिडेंट थे वहां के उनको किडनैप कर लिया था और उसके बाद जो है वो वेनेजुएला के ऑयल पर कब्जा कर लिया है। मतलब एग्जैक्टली कब्जा नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कब्जा ही है। उन्होंने भी कुछ कहा है। सो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने वेनेजुएला के लोगों की मदद के लिए अमेरिकी एजेंसियों को तैयार रहने को कहा है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वेनेजुएला के लोगों पर आए दो बड़े भूकंप बहुत भीषण थे और इनसे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका मदद के लिए तैयार और इच्छुक है। उन्होंने आगे लिखा, मैंने अपनी सरकार की सभी एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। हम अपने नए और अच्छे दोस्तों की मदद के लिए वहां मौजूद रहेंगे। आई होप सो ट्रंप, आई होप सो जो बोल रहे हैं वो आप करें। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री बोले अगर ईरान ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो ट्रंप के पास कई विकल्प हैं। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के लिए 60 दिनों की प्रतिबंधों में दी गई राहत एक अस्थायी कदम है और अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान समझौते के तहत किए गए अपने वादों को पूरा करेगा। बीबीसी उर्दू के मुताबिक कुवैत सिटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि अगर ईरान अपने वादों को पूरा नहीं करता तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कई विकल्प मौजूद हैं जिनमें प्रतिबंधों को फिर से लागू करना भी शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा निश्चित रूप से होगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि प्रतिबंधों को दोबारा बहाल किया जा सकता है। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के दौरान स्पष्ट वादे किए थे और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इन वादों का पालन करना जरूरी है। दोस्तों, ये तो मार्को रूबियो का कहना है। अब जरा आपको ये बताते हैं कि मोहम्मद पज़श्कियान क्या कह रहे हैं। जी हाँ, सॉरी, अब्बास अराग्ची क्या कह रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका को समझ आ गया है कि मध्य पूर्व में बने रहना उसके लिए फायदेमंद नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस युद्ध की बदौलत अमेरिका आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि इस क्षेत्र में बने रहना उनके लिए लाभदायक नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि इसराइल की नाराजगी के बावजूद अगर अमेरिका को वहां से निकलने का रास्ता मिलता है तो वे अपनाएगा, क्योंकि इसराइल ने ही अमेरिका को इस युद्ध में धकेला था और ये एक बड़ी आपदा साबित हुई। इसराइल अमेरिका को सिर्फ गैर जरूरी संघर्षों में खींचता है, और ये कहना कि अमेरिका को बड़ी आपदा साबित हुई है ये युद्ध, कहीं ना कहीं उन्होंने सही कहा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं मिस्टर ट्रंप के बारे में। सो ट्रंप ने रूटे से कहा, यूरोप के रवैये से निराश हूँ। जी हाँ, रूटे कौन है, आइए जरा आपको बताते हैं। सो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने बुधवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात की। जी हाँ, अब आपको तो पता ही है कि जब भी इनसे कोई मिलता है, या तो किसी की वो बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं, या तो किसी से वो बहुत ही ज्यादा शिकायतें करते हैं। और यूरोप से और नेटो से तो इनको इस वक्त इतनी ज्यादा शिकायतें हुई हैं कि क्या ही कहना है। मतलब नेटो को ईरान भी घेर रहा है इस चक्कर में, क्योंकि उनके एयर बेसिस का इस्तेमाल कहीं ना कहीं अमेरिका ने किया ईरान में वॉर के दौरान। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो नाटो ने बहुत ज्यादा परेशान किया। लेकिन एग्जैक्टली क्या कहा है, आइए जरा आपको बताते हैं। मार्क रूटे ने ईरान जंग पर अपनी बात रखी। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ईरान के मुद्दे पर आप जो कर रहे हैं वो कितना अहम है। ये सबसे पहले उस परमाणु क्षमता के बारे में है जिसे ईरान लगभग हासिल करने वाला था। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। उन्होंने आगे कहा कि ईरान परमाणु क्षमता हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका था। आपने देखा होगा कि G7 के सभी नेताओं ने इस बात की सराहना की कि इस परमाणु क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। इस युद्ध के दौरान 6 हफ्तों में यूरोप स्थित ठिकानों में 4,000 से 5,000 अमेरिकी विमान उड़ान भर चुके थे। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के हवाई अड्डे को व्यावसायिक उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों को संचालित कर सके। कुछ अलग थलग घटनाएं जरूर हुई जिनसे आप निराश हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपके यूरोपीय सहयोगी आपके साथ खड़े हैं। वेल, यहाँ पे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं रूटे, लेकिन ट्रंप यहाँ पर मानने वाले गए हैं। जी हाँ, ट्रंप बोल रहे हैं, अच्छा अब आ गए तुम, अब आ गए। जब मैं बोल रहा था कि ये कर लेते हैं वो कर लेते, तो तुम कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वॉर नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और अब तुम कह रहे हो कि अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया है। सो ट्रंप ने भी आखिरकार अपनी राय रख दी, क्योंकि ट्रंप तो ट्रंप है, वो अगर नाराजगी जाहिर नहीं करेंगे, वो भी ऐसे खतरनाक तरीके से, तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो आज आपकी हमारे साथ ये बैठक भी नहीं हो रही होती। जी हाँ, मतलब मैं कितना ज्यादा महान हूं, मतलब मैं गार्डियन एंजल हूं मिडिल ईस्ट का, मैं आपके लिए एक महानायक हूं, मतलब मैं सदी का महानायक हूं। आई डोंट नो अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री से मेरी बायोपिक क्यों नहीं बनी है। या ये मैं खुद से कह रही हूं, बट द थिंग इज कि ट्रंप के दिमाग में ये सब चल रहा है। और अगर ट्रंप को ये पता होता ना बायोपिक वाला सीन, तो वो कहते कि बाकी सब छोड़ो, तुम सब पहले मेरी बायोपिक बनाओ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ बिगेस्ट लेजेंड इन द हिस्ट्री ऑफ लेजेंडरी सिस्टम। जी हाँ, सो यहां पर ट्रंप ने कहा कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो आपकी ये बात भी नहीं हो रही होती। सो ये अच्छा होता अगर वो कहते कि हम मदद करना चाहते हैं। हाँ, मतलब उन्होंने कह दिया कि अच्छा होता अगर वो कहते कि हम मदद करना चाहते हैं, अगर मैं इन्हें फोन करता तो शायद जरूर जरूरत पड़ने पर ये मदद का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। ट्रंप ने कहा, मैं इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से निराश था। स्पेन की स्थिति तो बेहद खराब है, फिर भी मुझे इस व्यक्ति का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए हम यहां तक बात करने और चर्चा करने वाले हैं कि क्या हुआ था, आगे क्या होता है, और ये हम देखेंगे। जी हाँ, ये सब बोला जा रहा है। मतलब देंगे इसकी नाटो भी एक तरफा से, मतलब थोड़ा सा फनी लगता है मुझे नाटो। या मतलब नाटो जो है वो एक ऐसी पोजिशन पे है कि ट्रंप से पंगा ले नहीं सकता, ट्रंप का साथ दे नहीं सकता, क्योंकि पंगा लेगा तो फिर कहां जाएंगे, है ना। और अगर साथ देंगे तब भी कहां जाएंगे, तब बाकी की कंट्रीज जाके मारेंगी। तो यूरोप बेचारा आजकल सबसे ज्यादा यू नो व्हाट वीक पोजीशन पे है। मुझे नहीं पता कि उनसे ज्यादा वीक पोजीशन में कोई भी और कंट्री इस दुनिया में है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। बट द थिंग इज कि यहां पर वो बेचारे पंगा भी नहीं ले सकते, साथ भी नहीं दे सकते, बेचारे कंफ्यूज हैं। लेकिन यहां पर ट्रंप बींग ट्रंप सबको बता देते हैं कि अच्छा पोजीशन पे है। मुझे नहीं

नहीं पा रहे हैं। पर मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने अभी तक किसी का सर कैसे नहीं फोड़ दिया, बिकॉज ट्रंप जो है वो बहुत ही ज्यादा फनी कैरेक्टर हैं और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव कैरेक्टर भी है इन अ वे, बट ऑफकोर्स वो शोर ज्यादा करते हैं, मतलब गरजने वाले बादल ज्यादा हैं, बरसने वाले नहीं है। बट या मैकडी तो हिला ही दिया होगा रूटे को उन्होंने डेफिनेटली। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओमसॉग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओमसॉग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमसॉग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमसॉग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा, वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
6: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ वेनेजुएला में हुए दो ट्विन अर्थक्वेक का डेथ टोल जो है अब आ गया है सामने, जिसके बारे में वहां की इंतरिम सरकार की तरफ से जो है एक स्टेटमेंट दी गई है। जी हाँ, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज ने बताया है कि वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं। जी हाँ, और 700 से ज्यादा घायल है। यू नो व्हाट द वर्स्ट थिंग इज, कि नेशनल हॉलीडे वेनेजुएला में आज था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग घरों के अंदर थे और घरों के अंदर होने की वजह से जो है वो ज्यादा नुकसान हुआ है। बोर्डिंग स्कूल्स, घर, एयरपोर्ट, मतलब सब। अगर आप उस नजारे को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बॉम्ब स्ट्राइक साइट लग रही है, पर ये बॉम्ब स्ट्राइक साइट नहीं है। जी हाँ, वो भूकंप जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उसकी वजह से ऐसी चीज जो है, ऐसा मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। डेथ टोल ऑफकोर्स इससे ज्यादा भी हो सकता है और जो लोग हैं जो घायल हैं उनकी भी संख्या जो है इसमें बढ़ सकती है। सो अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इससे पहले अनुमान लगाया था कि इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की संभावना 44% थी। जी हाँ, डेल्सी रॉड्रिग्ज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप वेनेजुएला के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहे। वहीं फेसबुक पर शेयर किए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला को समर्थन और एकजुटता का भरोसा भी दिया है। आई होप सो, बिकॉज ये जो भूकंप है ये 150 साल में सबसे भयंकर भूकंप जो है वो अभी यहां पर देखा गया है। एंड यहां पर ये चीज जो है वो लोग जो है जिनकी जान इसमें गई, जो घायल है और बहुत ज्यादा घायल है, इसलिए डेथ टोल जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बट या हमारी जो है वो संवेदना है उनके साथ, हमारी जो है प्रेयर्स हैं वेनेजुएला के लोगों के साथ, और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये डेथ टोल जो है वो कम से कम रहे और लोग जो है जो इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका टोल भी जो है वो कम रहे, क्योंकि लिटरली ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भूकंप था। एंड द थिंग इज कि दो भूकंप एक साथ आए और वो 7.1 और 7.9 मैग्नीट्यूड के, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। जैसे मैंने कहा कि 150 सालों में इतना खतरनाक भूकंप जो है वो पहली बार आया है, और अगर आप उस जगह को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर कोई वॉर होकर हटी है। एयरपोर्ट का हाल जो है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। बोर्डिंग स्कूल, घर, पता नहीं क्या क्या वहां पे खत्म हो गया इस वजह से। यहाँ पर

दोस्तों, एंड टर्न्स आउट कि एलन मस्क की ट्रिलियनर गिरी सिर्फ कुछ दिनों की थी, क्योंकि वो फिर से बिलियनेयर बन गए हैं. मतलब ऑफ कोर्स ही इज स्टिल द रिचेस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ, बट द थिंग इज कि यहाँ पर वो ट्रिलियनेयर स्टेटस जो है वो चला गया है. और उसके पीछे रीजन क्या है? वेल, उसके पीछे रीजन वही है जिसने उनको ट्रिलियनेयर बनाया और अब वापस से उनको बिलियनेयर बना दिया, क्योंकि स्पेसएक्स की वैल्यूएशन जितनी हुई थी उसके बाद जो है उसके शेयर्स जो है वो काफी गिर गए. और उसके बाद जो ट्रिलियनेयर स्टेटस था, जो कि कल तक, इनफैक्ट पिछले कल तक दोपहर तक बरकरार था, वो रात में ही बदल गया. जी हाँ, अब उनकी नेटवर्थ है 957 बिलियन डॉलर. ऑफ कोर्स हम लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम लोग इनको ओवरथ्रो करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है. नोबडी कैन लिटरली आउट थ्रो मिस्टर मस्क. मतलब देखेंगे इसकी ट्रिलियनेयर स्टेटस जो है वो एक खतरनाक चीज तो है, बट इन्होंने एटलीस्ट इसे टच कर लिया, इसे फील कर लिया थोड़े दिन. और अब अगर स्पेसएक्स अच्छे से काम नहीं भी करता है तो इनकी बाकी की कंपनीज जो है वो इनको ट्रिलियनेयर बना देंगी जल्दी से. बट या, हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज. एलन मस्क इज एंड वॉज, मतलब नॉट इज बट वॉज, द फर्स्ट ट्रिलियनेयर ऑफ दिस अर्थ. जी हाँ, सो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त एलन मस्क कैसा फील कर रहे होंगे. मतलब उन्होंने लिटरली 600 बिलियन डॉलर के करीब, मतलब 450 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो खो दिया है, 450 से 500 बिलियन डॉलर के करीब खो दिया. सो आई एम क्वाइट यू नो इंट्रीग्ड बाय कि क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में, कि ओ माई गॉड मैंने कितने ज्यादा पैसे खो दिए, ओ माई गॉड मैंने 500 बिलियन खो दिए, ओ माई गॉड क्या करूँ मैं, क्या करूँ. मतलब 500 बिलियन, हम लोग थोड़े से पैसे खो देते हैं, हमको ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. उन्होंने 500 बिलियन के करीब खो दिए. एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और इसी के साथ वक्त हो गया है अब हमारे फेवरेट सेगमेंट में प्रवेश करने का। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड इज गोल्ड, मतलब जो पुराना है वही खूबसूरत है और वही सोने जितना कीमती भी है। क्या बात है, क्या बात है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी से अपनी फरमाइशों के साथ आ जाइए। आपको फरमाइश करना है कोई पुराना गाना, क्योंकि ये है ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने ही चलते हैं, और अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपके पास फोन नंबर भी है और आपके पास मोबाइल फोन भी है, कर डालिए। और इसी के साथ इस सेगमेंट में हम आपको सिर्फ पुराने गाने ही नहीं सुनाते बल्कि किस्से भी सुनाते हैं जो और भी इंटरेस्टिंग इस पूरे सफर को बना देते हैं। सो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने का, और जो गाना है वो है कौन है जो सपनों में आया। जी हाँ, आप सबके लिए।

पिक्चर्स, जो मूवीज आप देखते हैं, जो गाने आप सुनते हैं, ये खूबसूरत होते हैं. मतलब ऑफ कोर्स दे आर अनबीटेबल, लेकिन इनके पीछे की बैक स्टेज स्टोरीज जो हैं वो और भी ज्यादा खास होती है. सो आराधना के सक्सेस के बाद निर्देशक शक्ति सामंत, जिन्होंने आराधना को बनाया था, लिटरली आराधना कितनी बड़ी हिट थी इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक और मूवी बनाने की सोची और उसमें उन्होंने शमी कपूर को लेने का सोचा. जी हाँ, और मूवी का नाम था जाने अनजाने में. बस फिर क्या था, जाने अनजाने में उन्होंने फाइनलाइज की, उन्होंने अनाउंस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मूवी के सारे गाने गवाना चाहते हैं किशोर दा से. जी हाँ, लेकिन जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे वो, उन्होंने कहा कि शक्ति साहब बाकी सब तो ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शमी कपूर साहब पे रफी साहब की आवाज ज्यादा अच्छी लगेगी. जी हाँ, रफी साहब की आवाज शमी कपूर साहब की आवाज बन गई है. और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि कैसे शमी कपूर साहब रफी साहब की रिकॉर्डिंग्स में उनके साथ मौजूद हुआ करते थे. वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर बैठते थे और रफी साहब भी नोटिस करते थे कि शमी कपूर साहब कौन सी बोल पर कौन सा एक्शन कर रहे हैं और उस हिसाब से वो अपनी गायकी में मॉड्यूलेशन लेकर आते थे. फिर क्या था, यहाँ पर शक्ति सामंत ने म्यूजिक डायरेक्टर की बात मान ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक गाना तो डेफिनेटली किशोरदा से गवाऊंगा. तो वो गाना जाने अनजाने में मूवी में बैकग्राउंड में प्ले होता है. मतलब वो गाना वो नहीं है जो शमी कपूर साहब गा रहे होते हैं, कोई भी गाना वो नहीं था. वो गाना सिर्फ बैक ट्रैक जो है वो बैक यू नो जो है वो बजने वाला जो था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर जो है वो बनाया गया. अब बस फिर क्या था, जहां पर ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, जहां पर किशोरदा इस गाने को पहुंचे थे रिकॉर्ड करने के लिए, वहां पर शमी कपूर भी पहुंचे. क्योंकि शमी कपूर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज को मानते थे कि जब गाने रिकॉर्ड होंगे मेरा वहां होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. शमी कपूर साहब वहां पर पहुंचते हैं और किशोर दा को इतना खूबसूरत तरीके से गाते हुए देखते हैं और फिर उनसे रहा नहीं जाता है. वो आते हैं, जब किशोर दा बाहर निकल कर आते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, तो वो उनको गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि भाई इतना दर्द तुम लाते कहां से हो, क्या बाकमाल गाया है, क्या बात है. वेल, रफी साहब और डेफिनेटली किशोरदा की गायकी को सुनके ऐसा ही फील होता था. मतलब दर्द तो ऐसा दर्द, खुशी तो ऐसी खुशी, रोमांस तो ऐसा रोमांस कि क्या ही कहने. जी हाँ, यहाँ एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा ना, ये खूबसूरत सा जो रिश्ता है शमी कपूर साहब और रफी साहब की आवाज का, मतलब शमी कपूर साहब की मूवी और आवाज होती थी रफी साहब की। सो दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने लिटरली लिटरली अपने सक्सेसफुल की, मतलब इस सक्सेस की ऊंचाई पर भी दूसरे लोगों के बारे में सोचा। इनमें दो नाम जो है वो सबसे ऊपर मैं लेना चाहूंगी। एक तो दिलीप साहब, यानी कि दिलीप कुमार जी, जिन्होंने वो मौका मुमताज को दिया। जी हाँ, मुमताज उससे पहले छोटे रोल किया करती थी और उस वक्त के हिसाब से अगर कहें तो वो बी ग्रेड पिक्चरों में काम किया करती थी। बी ग्रेड मूवीज जैसा उनमें कुछ होता नहीं था, बट द थिंग इज कि वो मूवीज जो है वो इतने बड़े लेवल की नहीं होती थी, इतने बड़े बैनर की नहीं होती थी। बस फिर क्या था, उसके लिए उन्होंने लिटरली, महमूद जी ने दिलीप साहब को कहा कि क्या आप इस लड़की का प्रोफाइल देखेंगे, क्या आप इस लड़की को अपनी फिल्म में लेंगे। जब दिलीप साहब ने मुमताज को देखा, उनकी पिक्चर्स देखी, उन्होंने कहा वाह कितनी खूबसूरत लड़की है, क्या बात है, मुझे नहीं समझ आया कि इसको जो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं अभी तक उन्होंने इसे मेन कैरेक्टर में क्यों नहीं लिया। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम ऐसा करो इसका कोई एक्टिंग का जो है मेरे पास ले आओ, एक्टिंग जिसमें इसने की है वो मुझे दिखा दो और फिर मैं इसको ले लूंगा अगर मुझे अच्छा लगेगा तो। और वैसा ही हुआ। महमूद साहब ने, जी हाँ, एंड मुमताज आज भी कहती हैं कि महमूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और दिलीप साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मैं वो पनौती, वो बी ग्रेड फिल्मों की पनौती कभी तोड़ ही नहीं पाती। जी हाँ, फिर क्या था, दिलीप साहब ने उन्हें अपनी पहली बड़े बैनर की पिक्चर में लिया और वो पहला बड़ा रोल था मुमताज का। क्या आप गेस कर सकते हैं मूवी का नाम? जी हाँ, गेस कीजिए। इसी के साथ दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगी, जीनत अमान जी का। जी हाँ, और जीनत अमान जी का नाम मैं इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मिथुन का कैरेक्टर और करियर बना दिया था। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती जो कि लिटरली नॉर्मल से रोल कर रहे थे, छोटे रोल कर रहे थे, उन्हें कोई मेन कैरेक्टर देने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर तैयार नहीं होता था, और कभी अगर पिक्चर फाइनल भी हो जाती थी तो भी हीरोइन साथ छोड़कर चली जाती थी। जी हाँ, और इसके बारे में उन्होंने खुद अपने मुंह से, अपनी जुबानी जो है वो बताया है। ऐसे में जब एक डायरेक्टर, एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाते हैं जीनत अमान के पास, वो कहते हैं कि जीनत मैं ये पिक्चर बनाना चाहता हूँ और ये है मेरा हीरो, वो मिथुन चक्रवर्ती को अपना हीरो बताते हैं और उनकी फोटो जो है वो दिखाते हैं, उनका जो है वो ऑडिशन जो है वो दिखाते हैं और जीनत अमान कहती है वाओ व्हाट अ हैंडसम बॉय, आई विल डू द पिक्चर विद हिम। And guess what? वो जो literally बहुत सारे लोग जहां पर ये कहते थे कि मिथुन चक्रवर्ती को किसने हीरो बना दिया, ये तो बहुत अच्छा दिखता भी नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इतने सारे लोगों ने मना कर दिया उनके साथ काम करने के लिए, वो पनौती जीनत अमान ने उनके लिए तोड़ दी। इनफैक्ट उस कार्यक्रम में मिथुन जी ने ये कहा था कि अगर जीनत अमान नहीं होती ना तो शायद मैं भी यहां नहीं होता, मैं वो छोटा एक्टर ही बन के रह जाता और मैं इतना आगे कभी पहुंच ही नहीं पाता। जी हाँ, तो अगेन हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इन बड़े बड़े स्टार्स का। और मैं एक और चीज कहूंगी कि सक्सेस बहुत सारे लोगों को मिलता है, सक्सेसफुल बहुत सारे लोग जो हैं वो होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसे इतने अच्छे इंसान भी हो पाते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। अगर चाहती तो जीनत अमान भी मना कर सकती थी, चाहते तो यूसुफ साई यानी कि दिलीप साहब भी मना कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया, उन्होंने इन दोनों स्टार्स के कैरेक्टर जो है और करियर बना दिए। यहाँ पर अब आपसे विदा लेंगे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें,

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। साउथ ब्रिस्बेन में नदी किनारे बनेगा आलीशान इलाका। जी हां, क्वींसलैंड सरकार ने आज घोषणा की है कि साउथ ब्रिस्बेन के पुराने इंडस्ट्रियल वीसी साइट को पूरी तरह बदला जा रहा है। लैंड लीज कंपनी को इसका काम सौंपा गया है, जो यहां नदी के किनारे 4000 से ज्यादा नए घर, खूबसूरत वॉकवे और पार्क बनाएगी। वहीं अपटाउन मॉल का होने जा रहा है कायाकल्प। जी हां, ब्रिस्बेन के शॉपिंग लवर्स के लिए एक बड़ी खबर। क्वीन स्ट्रीट मॉल के सबसे बड़े रिटेल हब अपटाउन मॉल को अब विसिनिटी सेंटर ने पूरे $212 मिलियन में पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब इस मॉल का करीब $350 मिलियन की लागत से मेकओवर होने जा रहा है। वहीं ब्रिस्बेन ब्रोंकोस के कोच का तीखा बयान। रग्बी लीग प्रेमियों के लिए ब्रिस्बेन ब्रोंकोस के कैंप से बड़ी खबर आ रही है। कोच माइकल मैग्वायर ने उन अफवाहों को पूरी तरह बकवास करार दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि टीम के स्टार खिलाड़ी पेन हास मिड सीजन में ही क्लब छोड़ रहे हैं। इसी के साथ क्वींसलैंड के टेनिस क्लबों को मिली बड़ी सरकारी ग्रांट। ग्रास रूट स्पोर्ट्स के लिए ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड से एक शानदार खबर है। सरकार ने आज करीब $20 मिलियन के कम्युनिटी फंड का ऐलान किया है, जिसमें से राज्य के 21 टेनिस क्लबों को लगभग $6 लाख की ग्रांट मिलेगी। वहीं गिलास पिलिपिनास बास्केटबॉल टीम ब्रिस्बेन पहुंची। इंटरनेशनल बास्केटबॉल की बात करें तो फिलीपींस की नेशनल मेन्स बास्केटबॉल टीम गिलास पिलिपिनास आज ब्रिस्बेन पहुंच चुकी है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तैयारियों के लिए ये टीम ब्रिस्बेन में से एक हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। वहीं ब्रिस्बेन में फ्राइड मंथ का अनोखा जश्न। जी हां, ब्रिस्बेन की कम्युनिटी लाइफ से एक रंगीन खबर। जून के प्राइड मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए शहर में ब्रिस्बेन ओपन टेनिस इवेंट का आयोजन किया गया है। इसका मकसद खेल के जरिए समाज में समानता और समावेश लाना है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले वेनेजुएला भूकंप पर भारत की मदद। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर से। वेनेजुएला में आए दो भीषण भूकंपों के बाद वहां जान माल का काफी नुकसान हुआ है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों को भरोसा दिलाया कि भारत इस मुश्किल घड़ी में हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं यूपीएससी प्रीलिम्स से जुड़ी बड़ी अपडेट। करियर और एजुकेशन की बात करें तो संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा के स्टेज पर 569 उम्मीदवारों के फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया है। वहीं कोलकाता गोदाम हादसे में रेस्क्यू पूरा। जी हां, कोलकाता से एक दुखद अपडेट आ रही है, जहां बीते दिनों एक बड़ा कमर्शियल गोदाम ढह गया था। आज सुबह मलबे में से एक और शव मिलने के बाद इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। वहीं पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय का साफ बयान। पासपोर्ट नियमों को लेकर विदेश मंत्रालय ने आज एक बहुत ही जरूरी और साफ बात कही है। मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और इसे सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। वहीं ओडिशा में ग्रीन एनर्जी का बड़ा धमाका। पर्यावरण और बिजली की दुनिया से अच्छी खबर। एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स और ओरेडा ने आज ओडिशा में 1000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एक बड़े ज्वाइंट वेंचर पर साइन किया है। वहीं राम मंदिर डोनेशन को लेकर विवाद। अयोध्या से एक राजनीतिक और कानूनी खबर आ रही है। राम मंदिर डोनेशन में गड़बड़ी और आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आज सुबह कड़ा रुख अपनाया है। बीएचपी का कहना है कि इस मामले में शिकायतकर्ताओं के पास एफआईआर दर्ज कराने के पूरे कानूनी आधार मौजूद हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सख्त चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आज सुबह साफ साफ चेतावनी जारी की है कि बिना इजाजत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने वाले किसी भी समुद्री जहाज को बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं ईरान यूएस सीज फायर के बीच आशुरा का मौका। इसी बीच आज दुनिया भर में शिया मुस्लिम समुदाय आशुरा का पवित्र दिन मना रहा है। ईरान और लेबनान में महीनों से चल रहे युद्ध के माहौल चेतावनी जारी की है कि बिना इजाजत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने वाले किसी भी समुद्री जहाज को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ईरान यूएस सीज फायर के बीच आशुरा का मौका। इसी बीच आज दुनिया भर में शिया मुस्लिम समुदाय आशुरा का पवित्र दिन मना रहा है। ईरान और लेबनान में महीनों से चल रहे युद्ध के माहौल के बीच ये दिन इस बार बेहद

0: एक लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया है। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि शायद दुनिया कभी ये जान ही नहीं पाए कि उस घातक हमले के लिए असल में कौन जिम्मेदार था। वहीं न्यूक्लियर चीफ की ईरान वापसी की उम्मीद। दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने वाली संस्था यानी यूनाइटेड नेशंस यूएन के न्यूक्लियर चीफ ने आज बयान दिया कि उनके इंस्पेक्टर्स बहुत जल्द ईरान का दौरा करेंगे। वहीं गल्फ देशों के दौरे पर मार्को रूबियो। ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करें तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026, ब्राजील की बड़ी जीत खेल के मैदान से सबसे बड़ी खबर आ रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से मियामी में खेले गए एक धमाकेदार मुकाबले में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हरा दिया है। वहीं वेमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत बनाम बांग्लादेश आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा दिन है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होने जा रहा है। वहीं एशियन गेम्स के लिए अनुष्का यादव का नेशनल रिकॉर्ड। भारत की 18 साल की एथलीट अनुष्का यादव ने इतिहास रच दिया है। नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनुष्का ने हैमर थ्रो मीटर का थ्रो फेंक कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 67.2 मीटर का थ्रो उन्होंने फेंका है। वहीं पोल वॉल्ट में देव मीना ने फिर रचा इतिहास। रिकॉर्ड्स टूटने का सिलसिला यही नहीं थमा। पोल वॉल्ट एथलीट देव मीना ने महज एक महीने के अंदर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कल रात 5.46 मीटर की ऊंचाई पार कर नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट टीम से बाहर हुए बेन स्टॉक्स। क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी अनुशासनात्मक खबर। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम

0: Chard Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हो जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: तुम्हारे साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: मैडम, आई एम योर ओनली एडम।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਆ
0: ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ
3: ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗੇ
4: ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋ ਲੋ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੂਵੀ ਮਿਸ ਕਰ
0: ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ
3: ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
7: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस।
6: फॉर चेंज मौजूद

निर्माणदा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाने लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हैं। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हैं। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

वेलकम आदाब जी, सत श्री अकाल जी। तुसे बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 FM ते जी अच्छे संदेश वालक दे नाल सी जुड़ चुके हो वन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हैगा है जिहड़ा उह शुरू हो चुके है दी ते असीं इस वेले दे दौरान ढेर सारे गीत सुनने गल्लां वी करनियां ने ते नालों नाल तुहानूं जानकारी वी दिंदे रहना कि कुछ दुनिया भर दे विच चल रिहा हैगा। हर चीज मिलेगी तुहानूं जानण दे लई। तुसीं बस की करना है, तुसीं बस जुड़ना है, अपने फोन का इस्तेमाल करना है जो तुसीं अक्सर करने रहते हो। रेडियो बसवाणी 101.1 FM साथ फेसबुक पेज है जिथे बसवाणी @bsawani.com साथ ईमेल आई थी है जरिए जेड़ा अपनाना चाहते हो अपनाओ साडा गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल तुसी जुड़ो अपनी फरमाइशा भेजो दिल दी गल्ला करो। मैं हुणे वापस आनी हां उहनां समां इहनां सोहणे गीतां नूं इंजॉय करो।

जी आनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक्टर ते फिल्म मेकर फरहान अख्तर है ने जेड़े अजकल काफी ज्यादा सुर्खियां विच है ने। फरहान अख्तर दी डॉन 3 काफी ज्यादा सुर्खियां विच है ते डॉन 3 तो अचानक बाहर होण तो बाद ना रणवीर सिंह होर ज्यादा सुर्खियां दे विच आ गए क्योंकि वो हमेशा ही सुर्खियां च रहिंदे ने पर उन्हां दी इस वार सुर्खियां मुश्किलां करके आ क्योंकि मुश्किलां वधदियां दिख रहियां ने। हाल ही विच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्पलॉयर्स ने उन्हां दे खिलाफ नॉन कॉरपोरेशन डायरेक्टिव जारी किया है। मतलब के फेडरेशन दे डायरेक्टर्स कैमरामैन अते क्रू मैंबर्स हुण रणवीर सिंह दे नाल काम नहीं करनगे। इस वड्डे विवाद दे विचकार ना हुण उन्हां दीआं ओह फिल्मां दी चर्चा तेज हो गई है जिन्हां नूं रणवीर सिंह ने रिजेक्ट कर दिता है। उन्हां बारे दस्सदी आं एक एक करके पर पहला सुनो एक गीत।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते चार छे संदेश वाले दिन से बने हुए हो। अगला नाम है जी विकी कौशल की बहुत ही ज्यादा सोहनी जी शानदार जी फिल्म, ते ओ फिल्म हैगी है जी सैम बहादुर। सैम बहादुर काफी ज्यादा पसंद की गई है ना, तो सैम बहादुर दे लई भी मेकर्स दी पहली पसंद विकी कौशल नहीं सी, ओ सी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह नूं ए ऑफर हुई सी पहला फिल्म, पर उस वेले रणवीर अपनी फिल्म त्रासी विच कपिल देव दे किरदार निभा चुके सी, तुरंत बाद एक होर बायोपिक करना नहीं चाहते सी, नाल ही डेट सी समस्यावां दे चलदे उन्होंने फिल्म छड्ड दी थी, जिस तों बाद विकी कौशल ने सैम बहादुर दे नाल एक बार फिर जिहड़ी अपनी एक्टिंग हैगी है वह दर्शकों के सामने रखी, ते दर्शकों वालों भरपूर प्यार भी मिलिया।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.9 ते जी आरजे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। हुण जिहड़ी फिल्म मैं दसन जा रही हां जिसनूं रणवीर सिंह ने रिजैक्ट किया हैगा वह तुसीं मतलब कहोगे कि शायद ठीक है रिजैक्ट करके क्योंकि वो फिल्म जेडे एक्टर ने की थी ना उससे बहुत सूट की थी। नाम है जी कबीर सिंह। शाहिद कपूर दे करियर दी सब तो वड्डी हिट कबीर सिंह भी पहला रणवीर सिंह दी झोली विच डिगण वाली सी। डायरेक्टर संदीप रेडीवांगा इस दे लीड रोल दे लई रणवीर दे कोल गए सी पर उस समय रणवीर नूं इस किरदार दा पागलपन गुस्सा ते फिल्म दा डाकू माहौल थोड़ा ज्यादा लग्या। उन्हां नूं लग्या कि उन्हां दी इमेज ते पै सकता है इसलिए उन्होंने मना कर दिता ते ए फिल्म चली गई जी शाहिद कपूर को। शाहिद कपूर ते क्यारा अडवाणी दी जोड़ी इस फिल्म दे नाल इन्नी हिट होई ना कि हर कोई इन्हां नूं हुण बहुत ज्यादा प्यार करता है।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है इस नूं असी बिन क्वाइन कहंदे हां अपने बिन क्वाइन नूं बचा के रखो खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नूं दान विच दे दिओ तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: बहुत वधिया फिल्म
1: पर जो सिनेमे दे अंदर गए हैं आप चढ़दी कला च गए हैं ते जो बाहर आए तो चढ़दी कला च आए हैं।
0: कई फिल्मा ना बई जी दहाकियां च बनदियां ने ओ फिल्म इह आ चढ़दी कला।
2: कोई
0: ऐसा मोमेंट नहीं जिथे रोना ना आवे।
3: एक साल दा जिहड़ा आ ओ वक्फा नहीं आ, उस सालां दे वक्फे नूं उहनां ने समेट के ना स्क्रीन टाइम दे विच फिट कर दित्ता गया।
2: बहुत सोहणी मूवी होनी आ, हर पंजाबी नूं देखणी चाहीदी आ।
4: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
5: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
6: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वेयर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वेयर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
7: Queensland di navi sarkar Brisbane layi vadde kaam poore kar rahi hai. Asi 50 cent de kiraye pakke taur utte lagu kar ditte han. Asi hor vi vadde doctor muhaiya karwa rahe han ate Prince Charles ate Royal Brisbane varge hospitalan vich vadde sudhar lya rahe han. 1600 hor puliskarmi ate hor sakht kanoon lya rahe han. ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
8: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
9: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
10: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
9: अच्छा, वो क्या?
10: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
9: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपनी चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जीआर छे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए। देखो, साउथ दे दिग्गज डायरेक्टर एस शंकर अपनी कल्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म अनिने दा हिंदी रीमेक रणवीर सिंह दे नाल बनाउण दी प्लानिंग कर रहे सी। अनिने बहुत ही सोहनी फिल्म हैगी है, तुसी गूगल करके देख लो। रणवीर खुद भी इस दमदार रोल नू लैके बेहद एक्साइटेड सी। फिल्म दीयां तैयारियां शुरू हो चुकियां सी, पर तद फिल्म नू लैके कानूनी पड़चे शुरू हो गए, जिस वजह दे नाल अगे वधी नहीं पाई ते आखिरकार मेकर्स नू इह वड्डा प्रोजेक्ट बंद ही करना पिया। अपरिचित याद है ना थोनू? याद कर लो, दोबारा याद आ जानी, बहुत ही ज्यादा शानदार फिल्म है।

0: करवा रहे हां इस तो अलावा और भी योजनावां तैयार हन अ प्लेस टू कॉल होम खोजो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है अ प्लेस टू कॉल होम खोजो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके अ प्लेस टू कॉल होम खोजो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
2: देखो सच बता दो
3: मैं झूठ नहीं बोल रही मैनू सच्ची कुछ नहीं पता
1: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधु पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच
4: तेरे वर्गा आशिक वेख्या न तेरे वर्गी आशिकी
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar directed by Imran Malik Love This Song in cinemas this Eid ul Azha May 27th
6: यार सब ठीक है बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता कल को इमरजेंसी हो जाए तो
7: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ फोर्टिस मेडांटा सी के बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है
6: सीरियसली मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड
7: बिल्कुल ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्स ऑर्ग स्पेल्ड OMSORG वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360 ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर
8: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार हम यहां ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं
9: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से
8: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
9: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है
8: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा
9: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो
8: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी
9: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई
10: ओम्सॉग केयरिंग विद डिग्निटी

हां जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्टोनी 101 एम ते चर्चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म हैगी है जी भी बहुत खास हैगी है, बहुत ही ज्यादा सोहनी हैगी है। उस दे विच भी लगता है कि शायद जिस एक्टर ने की उस बिल्कुल सूट कर रहे हैं। फरहान अख्तर की ही गल कर रही है तो फरहान अख्तर की सुपर हिट फिल्म भाग मिल्खा भाल की गल हो रही है। थी भाग मिल्खा भाग दे लई भी रणवीर सिंह मेकर्स की पहली पसंद सी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा दी स्ट्रेंजर इन द मिरर विच खुलासा किया है कि रणवीर ने इस रोल दे लई ऑडिशन दिता सी अते उन्होंने कहानी बेहद पसंद आई सी पर बाद विच ना कुछ कारण करके उन्होंने इस कल्ट फिल्म तो मना कर दिता गया। बाद विच फरहान अख्तर ने ए रोल निभाया सीगा ते उन्होंने मना किया फरहान दी झोली च फिल्म गई हैगी ते फरहान अख्तर ने इस किरदार दे नाल पूरी ईमानदारी कीती।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है इस नू असी बिन क्वाइन कहंदे हां अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन क्वाइन कहंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

ये जीवन इतना अनमोल है कि हम जो चाहें अपनी सांसों के इस दुनिया में रहते हुए हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इन सांसों को, इस जीवन को, इसके महत्व को कभी समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। आइए आज एक बार फिर से कुछ सद्विचारों के साथ अपने ही जीवन को समझने की एक और कोशिश करते हैं हमारे रेडियो प्रस्वानी के सुबह के खास सफर जीवन आधार में। श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी, जीवन आधार के सफर में आज एक बार फिर से आपके साथ। तो चलिए इस अगले गीत के साथ अपने इस कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु गुरु की महिमा अपरंपार है और आपको इस संसार के भंवर से अगर बाहर निकलना है, इस संसार के भंवर को पार करना है तो गुरु का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, इस दुनिया का कोई भी धर्म बिना गुरु के जीना नहीं सिखा पाया है। गुरु की जरूरत हर धर्म में पड़ी है अपने कर्मों को पूरा करने के लिए और सही ढंग से पूरा करने के लिए। इस संसार से पार पाने के लिए एक सही रास्ते को ढूंढने की जरूरत है। जीवन में अपने दिमाग को सही दिशा देने के लिए गुरु की आवश्यकता है, जो बचपन से लेके आखिरी सांस तक आपका साथ निभाता है। इसलिए गुरु पे भरोसा रखिए और गुरु से शिक्षा लेना मत भूलिए। गुरु है तो

जीवन के आधार को इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। ये सफर कुछ ऐसे विचारों से भरा है जो इस सुबह हमारी जिंदगी को और भी खुशनुमा बना रहे हैं, और भी हमें जीने के तरीके सिखा रहे हैं और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। एक ऐसे ही विचार को आगे सुनने से पहले एक गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर दास जी का एक एक दोहा जीवन का सही महत्व सिखा देता है। कितनी सही बात है ना, जब जैसे चक्की चलती है और दो पटरों के बीच में जो भी कुछ पिसता है वो साबुत नहीं बचता है। ठीक इसी तरह से जब दो लोगों के बीच में आप पड़ते हैं, फिर चाहे वो आपके अपने हो गैर हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी चक्की में पिस जाते हैं। आप पर भी उंगली उठती है, आपको भी दोषी ठहराया जाता है, आप बच नहीं सकते। आप जाएंगे तो दो लोगों के बीच सुलह कराने, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उसी बात में फंस कर रह जाते हैं। आप भी उसी चक्की के एक पाटे के बीच में अनाज का एक ऐसा दाना बन जाते हैं जो उसमें पिस जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि पत्नी और माँ के बीच में अक्सर पति फंस जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहावत है। असल में जिंदगी में यही होता है, जब भी आप दो लोगों के बीच सुलह कराने की कोशिश करेंगे तो उन दोनों के बीच आपका अस्तित्व भी आ ही जाता है। और यही जीवन का सत्य है, यही रिश्तों का सत्य है। इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

साक्षी को सुन रहे हैं आप जीवन आधार में रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। कुछ ऐसे विचारों पर हमारा आपका साथ जो इस सुबह के साथ हमारे आज के दिन को भी खूबसूरत बनाते हुए हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की ओर एक अगला कदम है। अभी एक गीत के साथ आगे बढ़ूंगी और उसके बाद जीवन आधार में और भी कई खूबसूरत बातें आपके साथ बांटूंगी। सुनते रहिए मुझे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

कितने भी अच्छे कर्म करने की सोच लें, आप कितना भी गंगा नहा लें, आप कितने भी तीर्थ कराएं, आप मक्का, काशी, काबा कहीं भी घूमाएं, अगर मन साफ नहीं है तो आपको शांति भी कहीं नहीं मिलेगी और ऊपर वाला भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर ग्रंथ में एक ही तो बात कही गई है कि मन के मैल को साफ कीजिए, अपने अंदर झांकिए, आपको ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ग्रंथ पढ़ने से या फिर ईश्वर ईश्वर ढूंढने से, जगह जगह घाट घाट पे जाके ईश्वर को ढूंढने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब तक मन साफ नहीं होगा, जब तक आप दूसरों का दुख देखकर दुखी नहीं होंगे और दूसरों की खुशी में खुश नहीं होंगे, तब तक आपके मन का मैल धुला नहीं है और तब तक ईश्वर को तो छोड़ दीजिए, आपको शांति की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को साफ करिए, रोज नहाकर तन तो धो लेते हैं, मन का मैल भी धोइए। और मन का मैल गंगा नहाने से नहीं धुलेगा, मन का मैल धुलेगा मन को साफ करने से, दूसरों के लिए खासकर अच्छे विचारों को अपने दिल में, अपने मन में जगह देने से, अच्छे कर्म करने से। आइए उन्हीं कर्मों के नाम ये अगला गीत सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

भी अजीब है ना दोस्तों, दुख से बचने के लिए लोग अक्सर सुख से बचते हैं। दुख जब जिंदगी में आता है तो दुख ही है, दुखी है, दुखी है कहते हैं, और उन पलों में अक्सर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे जो सुख हैं, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, उन्हें जीना भूल जाते हैं। मृत्यु आ जाएगी, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे कहते कहते हम अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते हैं। यानी जो हमारे पास आज है हम उस पर ना ध्यान देके हम कल कैसा होगा उस पर ध्यान देते हैं। हमारी जिंदगी में दुख आएगा, हमारी जिंदगी में कोई बड़ी खुशी आएगी, इस लिहाज से हमारी जिंदगी ही हमसे कब दूर हो जाती है इस बात का हमें पता भी नहीं चलता है। सोचा है कभी? नहीं सोचा तो सोचिए, और आइए आगे बढ़ते हैं इसी सोच के साथ, इस अगले गीत के साथ भी। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन को जानने का समझने का सुबह का हमारा खास सफर जीवन आधार। आज इस सफर को अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे और इस वादे के साथ कि कल फिर से जीवन आधार में कुछ अनमोल विचारों के साथ आपसे फिर से हमारी जरूर होगी मुलाकात। ऊपर वाला आपको खुश रखे, रहम दिल रखे और जीवन के पथ पर आगे बढ़ाता रहे, आपकी खुशियां बरकरार रहें, इसी मनोकामना के साथ आज लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। फ्राइडे आ चुका है और वीकेंड की खुशबू हवाओं में घुलने लगी है। मैं हूँ आपकी हमेशा प्यारी प्यारी दोस्त आरजे चानी जैन, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ जानने का सफर ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन। जी हाँ, अब कुछ मिनटों तक भाई आपको तो मेरा साथ देना ही होगा, क्योंकि मैं एंटरटेन करने वाली हूँ और इस प्यारी मॉर्निंग को और भी खूबसूरत बनाने वाली हूँ कुछ बॉलीवुड की यादों के खजाने और इतिहास के उन पन्नों की जो आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं उन बातों के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कुछ फ्रेश अपडेट्स तो होंगे ही, क्योंकि विदाउट अपडेट्स हम भी अपडेट नहीं हो सकते, है ना? तो अपडेट्स तो जरूरी है। तो आइए इसी के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं प्यारे से गीतों के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
2: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। तो ट्रेवल अपडेट आप सभी के बीच में है। ब्रिस्बेन से क्वींस टाउन यानी कि न्यूजीलैंड के लिए अगर आप नए डायरेक्ट फ्लाइट्स लेना चाहते हैं तो नए डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है उनके रूट्स शुरू हुए हैं। स्काई सीजन एंजॉय करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो आइए इसी के साथ हम सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

क्लासिक फिल्म मुगल-ए-आज़म की। जी हाँ, इस फिल्म को बनने में लगभग 10 साल लगे थे दोस्तों। जी हाँ, और रिलीज के बाद ये 15 साल तक बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। अगर हम इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ये भी है कि फिल्म के कुछ सीन्स जो है हिंदी, तमिल और इंग्लिश में अलग अलग शूट किए गए थे। जी हाँ, अब बात करें अगर प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने के सेट पर उस जमाने में इतना खर्चा हुआ था जितने में कई पूरी जो फिल्में हैं वो बन जाती थी। जी हाँ, प्यार किया तो डरना क्या आज भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस गाने को। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हम सुनते हैं इन गीतों को। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, ओनली ऑन, ओनली ऑन, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी और एंजॉय कर रहे हैं चांदनी के सफर में इन गीतों को। आशा करती हूँ आपका ये सफर जो है बेहतरीन जरूर जा रहा होगा। तो आइए चलते हैं कुछ इतिहास के पन्नों में। दोस्तों आप जानते हैं 1987 में दुनिया ने पहली बार जो है प्रैक्टिकल GPS सैटेलाइट सिस्टम का एक्सपेंशन देखा था। जी हाँ, आज हम जैसे मैप्स हो गया, उबर हो गया और फूड डिलीवरी के लिए हम क्या करते हैं, GPS यूज करते हैं, राइट। लेकिन कभी लोग कागज के मैप्स देखकर सफर किया करते थे। सीरियसली सोचिए, अगर GPS ना होता तो हम सब कितनी बार गलत टर्न ले चुके होते, है ना। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा हिस्ट्री कैप्सूल। तो इसी के साथ अब कुछ गीतों का कैप्सूल हम जरूर लेते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि ड्राइव को बेहतर बनाने के लिए म्यूजिक का होना, गीतों का होना उतना ही जरूरी है जितना स्माइल करना जरूरी है। तो आइए इसी प्यारी मुस्कुराहट के साथ आपको सुनाते हैं ये गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। सुनते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। आपकी दोस्त RJ चांदनी आती है लौटकर इस गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिसवानी में। दोस्तों, किसी ने कहा है, अगर इरादे मजबूत हो तो कमियां रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि सफलता की पहचान बन जाती है। ऐसी ही कहानी अरुणिमा सिन्हा की है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए अगर जिंदगी एक पल में सब कुछ बदल दे तो। वैसे ही दोस्तों, 2011 यानी कि 2011 में अरुणिमा सिन्हा को कुछ क्रिमिनल्स ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया और इस एक्सीडेंट में उनका एक पैर काटना पड़ा। बहुत लोगों ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी रुक जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल के बेड पर अरुणिमा ने फैसला किया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी। सिर्फ 2 साल बाद दोस्तों, आर्टिफिशियल लेग के साथ उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर लिया और दुनिया की पहली फीमेल एवरेस्ट क्लाइंबर बन गई। देखा, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि अगर इरादे मजबूत होना तो कमियां रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि सफलता की पहचान बन जाती है। जिस तरह अरुणिमा सिन्हा ने अपनी पहचान बनाई, एवरेस्ट जीतने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी। तो हमें भी कभी भी अपने ऊपर से ना विश्वास कभी हटाना नहीं चाहिए। अगर हमारे इरादे मजबूत है ना, तो वो सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छुआएगी। तो हमें इससे इंस्पायर होना चाहिए और हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि हर सफलता के पीछे सबसे पहले हमारा विश्वास, खुद का विश्वास और खुद की ताकत होती है। अगर हम इरादों से डगमगाते नहीं है तो हम सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। तो आइए इसके साथ रेडियो ब्रिसवानी में सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिसवानी। सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी दोस्त जाने के साथ।

वेलकम बैक है जी रेडियो ब्रसवानी में, आप सभी सुन रहे हैं जाने का सफर और एंजॉय कर रहे हैं इन प्यारे प्यारे से गानों को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1969 में जब एक इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग, उन्होंने कहा था, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी कि ये सिर्फ चांद पर कदम नहीं था बल्कि इंसान के सपनों की जीत थी। इसीलिए इंसान जब कोई सपना देखता है और उस जीत को हासिल करना चाहता है तो अपने कदम हमेशा बढ़ाते रहने चाहिए, कभी भी अपने ऊपर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। तो ये मतलब मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ ऐसी बातें जो हमें इंस्पायर करती है। अगर हम लोगों के हम कभी कभी क्या होता है, हम खुद हार मान जाते हैं, लेकिन कभी जब हम हिस्ट्री देखते हैं जिन्होंने इतिहास रचा है तो वो चीज़ हमें इंस्पायर करती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो इसी के साथ दोस्तों, इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं होता, इतिहास वो लोग लिखते हैं जो मुश्किलों के ना सामने रुकते नहीं है। शायद आपकी जिंदगी का अगला कदम भी किसी नए इतिहास की शुरुआत हो। इसी तरह की कहानियां आप सभी मेरे साथ जुड़कर रेडियो ब्रसवानी में सुनते रहिए, क्योंकि रेडियो ब्रसवानी के मॉर्निंग शो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप सभी को ये प्रोग्राम हमेशा अच्छा लगता रहे और आप सभी को मैं न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन देती रहूं। तो इसी के साथ दोस्तों, पॉजिटिव फीलिंग के साथ इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अगले हफ्ते फिर आप सभी के बीच जरूर आऊंगी और आप सभी के बीच अपडेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन जरूर लेकर आऊंगी। और इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत और अपने वीकेंड को खूब इंजॉय कीजिए और आप सभी मुझे याद करना ना भूलिएगा। सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। काराकास में 164 लोगों की मौत, 971 घायल, सैकड़ों अब भी लापता। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप आया है। एक मिनट के अंतराल में आए 7.1 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई। कई इमारतों और मकानों के ढहने की खबर आई है। इस घटना में राजधानी काराकास में 165 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 971 लोगों के घायल होने की खबर है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इमारतें ढही, सड़कें फटी। 39 सेकंड में आए भूकंप के दो जोरदार झटकों से वेनेजुएला में तबाही। वेनेजुएला में महज 39 सेकंड के भीतर भूकंप के दो शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और वेनेजुएला के अधिकारियों के अनुसार इन झटकों के कारण इमारतें ढह गईं, सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा और राजधानी काराकास सहित देश के कई हिस्सों में दहशत फैल गई है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। वेनेजुएला में भूकंप से बड़ी तबाही, पीएम मोदी ने कहा भारत हर संभव मदद के लिए तैयार। वेनेजुएला के उत्तरी तट के पास आए भूकंप के जोरदार झटकों ने भयंकर तबाही मचाई है। इस विनाशकारी भूकंप में अब तक 32 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। पीएम मोदी ने वेनेजुएला में आए भूकंप पर दुख जताते हुए कहा कि वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप से हुई तबाही से बहुत दुख हुआ है। भारत के लोगों की तरफ से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति और खासकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ भारत एकजुटता से खड़ा है और हर संभव मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तानियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्का 182 में लगाया था बम, कनाडा ने पहली बार किया स्वीकार। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS ने 40 से ज्यादा सालों में पहली बार माना कि 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में हुए बम धमाके में खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था जिसमें 339 लोगों की मौत हुई थी। कनिष्क त्रासदी को आतंकवाद की एक घिनौनी हरकत बताते हुए ओटावा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों को बम लगाने का जिम्मेदार ठहराया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, 4 मिनट हो गए हैं 7 बजकर और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा ये साथ है और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज फ्राइडे है, 26th of June 2026। विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी फ्राइडे टू यू। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए। तो बताइए दोस्तों, क्या हाल है, कैसा रहा आपका वीक? नाउ दैट सप्ताह के अंत में आ गए हैं हम, एंड वीकेंड इज वेटिंग। आई एम श्योर अच्छा ही रहा होगा आपका वीक, एंड आई एम श्योर आप मेहनत कर रहे हैं टू मेक इट स्पार्कलिंग एंड फॉर द वीक। चलिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत से गीत लाए हैं आपके लिए, मॉर्निंग का आगाज करते हैं। मैं हूं आपके साथ ही नीलम, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको।

वैसे बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। वैसे पिकिंग अ लाइन फ्रॉम द सॉन्ग, किरदारों में उलझा है हम और सभी लोग हम एक किरदार एक पार्ट प्ले कर रहे हैं और कहाँ तक ट्रू है हम अपने सेल्फ से ये आप ही जानते हैं। तो आज हम सोचते हैं कि क्यों नहीं लुकिंग एट आवर ट्रू सेल्फ टुडे एंड नॉट जस्ट प्लेइंग अ पार्ट और कोई किरदार नहीं निभा रहे हैं बट जस्ट लुकिंग एट ourselves and what we want in life, जो हमें खुश करता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, फोकस्ट देखते हैं। ब्रिस्बेन के लिए 12 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे बताया गया है और टॉप्स रहेंगे 20, लेकिन 95% चांस रेन बताया गया है आज के लिए। सैटरडे को 100% चांस रेन है, संडे को 75% चांस रेन बताया गया है। मेलबर्न 9 डिग्रीज क्लाउडी डे, टॉप्स रहेंगे 14 और कैनबरा के लिए 4 डिग्रीज है, मोस्टली क्लाउडी, टॉप्स रहेंगे 13, विंड गस्ट 11 किलोमीटर एन आवर। सिडनी के लिए 11 डिग्रीज अभी है, मोस्टली क्लाउडी डे, टॉप्स रहेंगे 16, विंड गस्ट बताया गया है 13 किलोमीटर एन आवर। गोल्ड कोस्ट के लिए 14 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 19 और चांसेस ऑफ रेन बताया गया है आज और ओवर द वीकेंड। और सनशाइन कोस्ट के लिए बताया गया है 16 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 20 और पार्टली क्लाउडी कंडीशंस अराउंड 1 o'clock बताया गया है। बारिश 75% चांस, रेन बताया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वेलकम बैक दोस्तों, और ट्रैफिक अपडेट देते हैं। पैसिफिक मोटरवे रोशडेल, यहां पर स्टेशनरी व्हीकल हैजार्ड है, 9 ब्लॉकेजेस साउथबाउंड टुवर्ड्स स्प्रिंगवुड। और हमारे पास जैसे ही अपडेट्स आते हैं हम आपको बताते चलेंगे। रास्ते पर है आप, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। हमारे साथ अभी जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका। 16 आफ्टर 7, आज फ्राइडे है। गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे।

दोस्तों फिल्म टू स्टेट से लिया ये गीत, बहुत ही खूबसूरत है। और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। वैसे जो कि फ्राइडे है आज, शायद आपने छुट्टी ली है आज, या फिर तबीयत आपकी अच्छी नहीं है, घर पर रहने वाले हैं, या फिर वर्क करके ऑलरेडी आ गए हैं घर पर, नाइट शिफ्ट किया है, शायद आपने सोने का प्लान बनाया है आपने। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट रहता है सोने के लिए, एंड कुछ लोग आसानी से ही सो जाते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं आज, आई एम श्योर यू गोना हैव अ गुड डे। एंड अभी हमारे साथ जुड़े हैं आप, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और दोस्तों गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे हैं, सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट में क्या खाना है आपको। वैसे ढेर सारे प्लान्स हम बनाते हैं द डे बिफोर कि चलो ये करना है वो करना है, कभी कभी ये मटेरियलाइज नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो यू नो समटाइम्स आलसी आ जाता है, कहते हैं कि अच्छा चलो द फॉलोइंग डे कर लेंगे, एंड पूरा वीकेंड बीत जाता है आपने कुछ नहीं किया। फिर मंडे हुआ तो आप हैरान परेशान से सोच रहे हैं कि अरे सोचा था ये करने का, ये नहीं हुआ, लेकिन क्या करना है दोस्तों, टेक वन थिंग एट अ टाइम, सभी चीज़ एक लागे पर तो होगा ही नहीं। तो बस समटाइम्स अगर आपने कुछ प्लान किया है एंड यू रियली नीड टू डू इट बट आलसी है आप, तो अपने आप को टाइम दीजिएगा, इतने टाइम के अंदर मुझे ये कर लेना है, एंड गेट टू इट, यू नो यू हैव टू स्टार्ट। एंड हम हमेशा ये कोई भी चीज़ ऐसे एक्चुअली होता है कि अगर हम सोचते हैं स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना, पूरा रिसर्च आपने कर लिया है, अच्छा बस ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अभी काम करने के लिए तो रिसर्च ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा आपका दिल किसी चीज़ पर आया है कि आप ये करना चाहते हैं, समझ लो कोई योगा आपने स्टार्ट करना है आपको, लेकिन इतने सारे योगा वीडियोस आपने देख लिए हैं, आप सोच रहे हैं कि कौन वाला पहले चूज करूं, तो कहते हैं कि यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। अभी उसे घर का काम आप लेते हैं, स्टार्ट स्मॉल, किचन को ही ले लें, तो किचन से ही स्टार्ट करें, तो वहाँ से अभी आपने फ्रिज क्लीन कर लिया या माइक्रोवेव क्लीन किया, लेकिन कुछ बगल में दिखा तो आप वो भी करना अटैक, आपने उसको भी अटैक कर लिया, फिर स्टोव को, तो आपका पूरा किचन ऐसे क्लीन हो जाता है आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप पहले से सोचते पूरा घर मुझे आज क्लीन कर लेना है, सच अ बिग डील, तो आप पहले से घबरा जाते हैं, फियर इज द एंड काम नहीं हो पाता है। सो जो भी करना है, जो भी आप प्लान बना रहे हैं आज दोस्तों करने के लिए, स्टार्ट स्मॉल, स्मॉल गोल्स, यू गोना अचीव देम। और जो भी हो, हैव द म्यूजिक बिसाइड यू सो यू एंजॉयिंग योरसेल्फ एंड जस्ट गो अलोंग।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: वेलकम बैक दोस्तों, इट्स 7:35 और चलिए देखते हैं कि ट्रैफिक में क्या बताया गया है। इप्सविच मोटरवे गुडना, यहां पर स्टेशनरी व्हीकल हैजार्ड है, नो ब्लॉकेज वेस्ट बाउंड टुवर्ड्स इप्सविच। पैसिफिक मोटरवे ब्रिस्बेन सिटी, यहां पर डेब्रिस ऑन रोड है, लेन और लेन्स आर रिड्यूस साउथ बाउंड टुवर्ड्स ग्रीन स्लोप्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। आज अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको आज के दिन, और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं बेस्ट विशेज आपको देना चाहेंगे और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ब्यूटिफुल डे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 0411270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 0411270035। रिमेम्बर द नंबर इज 0411270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
5: वेलकम बैक दोस्तों, 7:45 और हमारे पास रिक्वेस्ट आया है। मिस्टर जतीश पूरन लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए हैं और हैज रिक्वेस्टेड फॉर दिस सॉन्ग। आई होप अंकल दिस इज द राइट वन, एंड विश करना चाहेंगे आपको सेफ ट्रेवल्स, जो जहां पर भी आप जा रहे हैं, आपकी मंजिल जहां भी है। होप यू एंजॉइंग एवरी मिनट ऑफ इट।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आई केम अक्रॉस दिस लिटिल पोएम, फ्यू वर्ड्स हियर, बहुत खूबसूरत। चलिए सुनते हैं। आंखें देखती हैं तेरा रहम है, सांसें चलती है तेरा रहम है, कारोबार चलता है तेरा रहम है, मैं करता हूँ मैंने किया है बस मेरा वहम है। दिस सो ब्यूटिफुल एंड दैट्स सो ट्रू। जो भी हम करते हैं हम सोचते हैं बस हमने ही किया है, मैंने किया है, मैंने क्या है, ये मैं जो वर्ड है इसे ना दवा ठीक करता कर सकता है ना दुआ, लेकिन इसको खुद ही हम इस पे वर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी। मलिका तिल फरीब।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी, आपकी अपनी पहचान, और सुबह का सफर में आप शामिल है. वैसे किशोर कुमार पे हमारे पास एक दो फैक्ट है जो शेयर करना चाहेंगे आपसे. सो हाफ टिकट मूवी शायद आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो जरूर देखना, बहुत फनी मूवी है. और इसमें किशोर कुमार है और इसके साथ मधुबाला है, एंड देन प्राण इज देयर टू. तो ये दो जो जो गीत, तो ये गीत के बारे में है. इट्स आइकॉनिक सॉन्ग, आके सीधी लगी दिल पे. तो इस पे किशोर कुमार ने, ही हैज एक्चुअली डन द फीमेल वोकल्स एज वेल एज द मेल वोकल्स एज वेल एज द फीमेल वोकल्स. तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा, इट्स अ फनी. एक्चुअली इस टाइम पर प्राण क्या करता है, ही इज ट्राइंग टू, ही हिट सम डायमंड्स इन किशोर कुमार्स बैग. And यहाँ पर he's trying to chase him to catch, to find those diamonds. तो he's dressed as a woman and he's running around this circus sort of thing. It's very funny. जरूर देखिएगा, Half Ticket is very beautiful movie. और एक और एक incident है, a fact है. It's an infamous signboard. He had a literal signboard posted outside his bungalow in Mumbai that read, "Beware of Kishore." Warning visitors about his quirks. And I remember कहीं हमने पढ़ा था कि if he's singing a song, वो पूरा एरिया खाली होना चाहिए, because he'll dance his way through the song. And it was such a beautiful thing. अगर आपने कभी stage shows आपने कभी try किया है देखने के लिए तो जरूर देखेगा. He doesn't stand still. He wouldn't stand still. He was such an active and yeah, beautiful singer, but yeah, still हमारे बीच है. And चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों, इट्स 1 after 8 और 1 घंटे का सफर बाकी है. हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं. सुबह का सफर में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों. और अभी यहाँ का जो ब्रिस्बेन का टेम्परेचर है वो है 13 degrees. आज का टॉप्स रहेगा 20. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. वैसे कहते हैं, ढूंढो तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी. So look within.

0: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA. From 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane. With 32 teams already confirmed, participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar. Connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: वेलकम बैक दोस्तों, और न्यूज में आप देखोगे कि ढेर सारे चीज हो रहे हैं हमारे अगल बगल। आप देख रहे हो कि इर्थक्वेक्स आ गए हैं एंड देन हमारे जो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, एंड देन आप देखोगे कि कार्ल स्टेवनोविच, अगर आप 9 News ज़्यादा देखते हैं तो मॉर्निंग शोज में रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है। सो ही इज़ ऑल्सो गोइंग अवे, ही इज़ लीविंग आफ्टर 26 years ऑफ हिज करियर, एंड आई गेस उसका अपना एक पॉडकास्ट है। सो एवरीथिंग इज चेंजिंग अराउंड अस, थिंग्स आर हैपनिंग, एंड कुछ अच्छे चीज हो रहे हैं, कुछ बुरे यू फील कि कुछ बुरे हो रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड इट गिव्स अस एंजाइटी एंड फॉर द फ्यूचर। बच्चों का यू नो, अगर यंग एडल्ट है आप और अगर आप देखते हो कि ढेर सारे चेंजेस होने जा रहे हैं शायद हमारे रूल्स में एंड रेगुलेशंस में कि क्या होगा। एंड दोस्तों, इस दौर में जब ये चीज़ें हो रही हैं तो ये इट्स ओनली नेचुरल कि आप फील करेंगे कि इट्स वेरी अनस्टेबल एंड थिंग्स आर, आप ऐसा फील करें यू आर ऑन शेकिंग ग्राउंड एंड कोई स्टेबिलिटी नहीं है एंड एवरीथिंग। लेकिन थिंग इज, यू हैव टू, आई गेस दिस इज द टाइम व्हेन यू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर, यू फील कि व्हाट यू आर डूइंग एट दिस टाइम and just making right choices and being strong and supporting each other as a community. And so that's the basic thing, it's a unity, getting along together. Yahan par as a community you come together, you be strong, you support each other, you enrich each other, aur sabhi ko aage badhne de, sabhi ka mauka de, and that's aise spirit rakhna chahiye dosto. And तो एन्जाइटी अगर आपको हो रही है, अगर आप न्यूज़ देखते हो, टेंशन में आ जाते हो, तो अपने जो लिमिट कीजिएगा, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से आपको अफेक्ट करता है। और ज़रूरी है कि आप घर से बाहर निकले और वॉक्स पे जाए, आपको आपका जो दिमाग है वो काफ़ी शांत कर देगा, एंड देन आई गेस यू कैन गो फॉर ट्रेवल्स एज वेल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं ये गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो रिजवानी, आपकी अपनी पहचान।
5: गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
6: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
5: सुना।
6: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

समझाई। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म सरफरोश से इसको लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। वैसे वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ क्विक लेबल्स, हम इतना इजीली इतना जल्दी से हीरो विलन चूज कर लेते हैं, गुड और बैड चूज कर लेते हैं, राइट और रॉन्ग चूज कर लेते हैं। बट लाइफ ये हम सोचना भूल जाते हैं कि रियली इट्स दैट सिंपल, यू नो। एंड ये हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों कि एवरी पर्सन इज कैरिंग अ स्टोरी एंड यू कैन नॉट सी अ बैटल दे आर फाइटिंग एंड दैट यू डिड नॉट फाइट एंड अ चॉइस दैट यू डिड नॉट हैव टू मेक। तो अगर हम ऐसे पर्सन है कि हम इजिली किसी को कह देते हैं इसने ऐसा किया तो ये अच्छा ठीक है, ये ऐसा किया तो बैड पर्सन है, या यू नो वी हैव दैट, वी ट्राई एंड मेक आवर ओन स्टोरीज अबाउट अ पर्सन एंड वी, अगर आप सोचते बोलते नहीं हैं लेकिन आपके दिमाग में ये चल तो जाता है कि नॉट अ गुड पर्सन, तो लेट्स नॉट डू दैट। चलिए आज खुद से ये कहते हैं कि लेट्स ट्राई। अभी जल्दी से तो हो नहीं सकता, ये आदत अगर आपकी है तो आप जल्दी से एकदम से नहीं चेंज हो सकते ओवरनाइट, लेकिन हम इसमें कोशिश कर सकते हैं, हम इस पर वर्क कर सकते हैं कि चलो आज से हम ये जजमेंटल वाला एटीट्यूड जो है ये छोड़ते हैं एंड देखते हैं पर्सन एज अ पर्सन एंड ओनली गिव लव, जस्ट गिव लव। एंड अभी फिलहाल मेरा जो शो, मेरा गो टू शो है वो है मेरे साईं। एंड इतना ब्यूटिफुल शो है एंड पहले नहीं देखा था, लेकिन आई एम गेटिंग अलोंग, ढेर सारे एपिसोड्स है अभी, लेकिन इट्स मेकिंग मी थिंक डिफरेंटली, ये फील डिफरेंटली दूसरों के बारे में एंड just about giving love and it's such a beautiful feeling and I hope in myself, khud se ye meri khwahish hai ki I learn something from it ye mera hope hai ki isse kuch to main seekhu apne life acha banane ke liye ya fir ek acha person banne ke liye, you know। chaliye dosto, एंजॉय करते हैं ये गीत।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। जो स्कूल छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है टुडे इज द लास्ट डे 27 से टू 12 जुलाई, तो बच्चे घर पर रहने वाले हैं। प्राइवेट स्कूल्स के आई थिंक छुट्टियां स्टार्ट हो गए हैं, 1 वीक अर्ली रहती है, राइट? और ये वेदर तो वेट रहने का फोरकास्ट बताया गया है फॉर द कमिंग वीक, देखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फोरकास्ट में कुछ और रहता है, लेकिन होता कुछ और, कभी कुछ। लेकिन द थिंग इज, आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा कि बच्चों के साथ क्या करना है। कहीं बाहर जा रहे हैं शायद, या पार्क्स में, लाइब्रेरीज भी है, एंड ढेर सारी एक्टिविटीज एंड प्लान किए हैं आपने। तो जो भी आप कर रहे हैं, आई एम श्योर यू गोना हैव लॉट्स ऑफ फन। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं, बहुत दिस इज फनी, बट कुछ लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब बच्चों की छुट्टियां रहती है, बिकॉज वो जान नहीं पाते कि क्या करना है, यू नो। एंड दिस इज द टाइम मे बी डू लिटिल बेकिंग स्टफ एट होम, जहाँ बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं कैसे किचन में टूल्स इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों के लिए भी एक सेफ्टी वाला नाइफ रहता है, यू नो, ताकि वो हाथ में काट ले। मैचेस किस तरह से करते हैं, अभी तो वैसा वाला गैस रहता है तो मैचेस की जरूरत नहीं रहती है, बट यू नेवर नो कब सिचुएशन ऐसा आ जाए कि जब आपको मैचेस यूज करना पड़े। तो दिस लिटिल थिंग्स यू नो सीखना बहुत ज़रूरी है और सिखाना भी, और बच्चों को। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें पर आप ध्यान दे सकते हैं। और अगर जो ऐसा है कि वेकेशन के में बच्चों को छोड़ रहे हैं तो दिस इज़ सैड, बट क्या है कि काम से अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो बच्चे वेकेशन के जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखते हैं एंड दे गो फॉर ट्रिप्स एंड ऑल, दे हैव ब्लास्ट एक्चुअली। सो ये किचन में भी यू नो उनके साथ कुकिंग, लिटिल बिट ऑफ कुकिंग करते हैं जो वहाँ पर असिस्टेंट रहते हैं टीचर्स एंड ऑल, तो दे हैव अ गुड टाइम एज वेल। तो अपने आप को गिल्टी ना फील करें कि आप बच्चों को वेकेशन के छोड़ते हैं। तो आप एक दो दिन शायद ऑफ ले सकते हैं बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, लेकिन कभी कोई चीज़ से गिल्टी ना फील करें दोस्तों, कि यू गिविंग लव। एंड अगर नौकरी है तो और वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती है, देन यू कान डू मच अबाउट इट, बिकॉज सभी चीज़ के अलावा खाना भी खाना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है एंड तो वर्क तो करना पड़ेगा। तो या दैट्स इट, दिस इज़ द स्टोरी, ये हमारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार है। चलिए दोस्तों, एन्जॉय करते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, और याद दिला दे आपको कि 9 पर जुमा प्रोग्राम है, आधे घंटे का सफर बाकी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं आप, स्वागत कर लेते हैं आपका। सुबह के सफर में आप शामिल हैं।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। घर के अंदर आपने पॉट प्लांट्स रखे हुए हैं शायद, तो जो हाउस प्लांट्स है उसको वाटर करने का कुछ टिप्स हम आपको देंगे। तो जैसे अगर अभी सिंस विंटर है तो शायद घर के अंदर आप हीटर ऑन रखते हैं एंड एवरीथिंग, तो क्या होता है कि जो सोइल्स है वो ड्राई हो जाते हैं। आई थिंक जब एसी भी ऑन होता है तो क्या ह्यूमिडिटी जो है तो होता है एयर में वो सब अब्जॉर्ब कर लेता है, यू नो। एंड ऑल इन ऑल दोनों टाइम पर भी ऐसा है कि जो सोइल है, अगर प्लास्टिक वाले कंटेनर में आपका जो प्लांट है तो आप ज़रूर ऐसे ही नहीं वोटा करें, और रात में तो बिल्कुल ना वोटा करें। ये जाता है बाहर वाले गार्डन में या फिर भीतर वाले, क्या क्या होता है इसमें सड़न जल्दी से होता है। मेक श्योर चेक करें कि जो पॉट में, स्पेशली अगर प्लास्टिक का पॉट है आपका, तो देखे जो सोइल है वो फील करने पर ड्राई है कि नहीं, यू नो। एंड देन यू गो स्लोली विद वॉटरिंग योर प्लांट। अगर जो टेराकोटा या मिट्टी का बना हुआ जो पॉट है तो वो ब्रीदेबल है ना, तो वो अच्छा है। लेकिन इसमें भी ऐसा होता है, उसमें अब्जॉर्ब होता है प्लास्टिक में, इसमें जो लिक्विड है वो जल्दी से बाहर निकलकर एयर में हो जाता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप वोटा करते हैं। आप देखेंगे कि प्लांट किस तरह से विल्ट होता है, देन यू बी एबल टू, एंड देन ऑलवेज जज बाय टचिंग द सोयल। तो दोस्तों आई रिमेम्बर जो हमारा जो एकदम से एक ही डायरी विद वन लीफ बचा था, एंड बिकॉज वी वे ओवर वोटरिंग द लिटिल पुअर थिंग एंड वी वे किलिंग इट डे बाय डे, तो फिर मैंने स्टार्ट किया बेसिकली 5 मील बोटा से, एंड नाउ एकदम यू नो हेल्थी वाला हैप्पी लुकिंग वाला प्लांट हो गया है। इट्स फनी बट व्हेन यू सी अ प्लांट जो इज फ्लोरिशिंग यू, इट मेक्स यू रियली हैप्पी, राइट? तो या सो इट्स अमेजिंग, द जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग, एंड ढेर सारा चीज मुझे सीखने को मिला कि किस तरह से क्या देखना पड़ता है आपको। लेकिन आज तक I don't remember if the leaves have ever turned yellow. I don't know, but there's lots of leaves in the plant now. एक ही पत्ती से start हुआ था वो एक branch, because we bought this plant वो almost dead हो गया, and then there was this leaf and I was thinking, please God, please let this plant live. And then we started, and then eventually I came थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, read किया कि क्या needed है, and so yeah. तो अगर हाउस प्लांट्स आपके घर पे है, फिडल लीफ फिग ये है, 1 कप ऑफ वोटा नीडेड है अ वीक आपके। लेकिन ये जरूर देखिएगा कि किस तरह के पॉट में आपने इसको लगाया है, प्लास्टिक वाला कि टेराकोटा, या फिर जो स्नेक प्लांट है ये 1 कप ऑफ वोटा एवरी 2 वीक्स नीडेड है। कुछ प्लांट्स रहते हैं बहुत कम वोटा नीड करते हैं, यू नो। सो रियली रियली आपको केयरफुल रहना चाहिए। पोथोस जो है 1 कप ऑफ वोटा एवरी वीक व्हेन द सोइल इज ड्राई। बोस्टन फर्न जो छोटी छोटी पत्ती वाला जो फर्न है, कली कली, एंड इट्स ऑल इन, इट्स ब्यूटिफुल फर्न, एंड ये 1 कप ऑफ वोटा ट्वाइस अ वीक। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं पेड़ को लेकर या गार्डनिंग को लेकर, तो जरूर हमें बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। वैसे कहते हैं 1-3 वर्षों का जो संघर्ष है बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा, तो कभी हिम्मत ना हारिएगा और जो मेहनत है वो करते जाएगा और जो इनाम है, जो आप सोचते हैं कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो जो रिसीविंग वाला जो पार्ट है उसे छोड़कर बस गिविंग वाला पार्ट आप कीजिएगा। जो करते हैं बस करते जाइएगा, जो संघर्ष है लेकिन जो उसका जो लेटर ऑन जो मिलेगा आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा, एंड देन यू बी स्टन्ड। चलिए दोस्तों, और अच्छा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, एंड एंजॉय करते हैं ये दो गीत।

दोस्तों अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया यह है बल, और ये आशा करते हैं कि आज का दिन आपके बहुत अच्छा गुजरे, व लवली डे, ब्यूटिफुल वीकेंड, और मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन नमस्कार।

0: Maria, suco, suco.
1: यह रेडियो 71 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

करने वाले की गुनाह उनका खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उनको बख्श देते हैं, माफ फरमा देते हैं, उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आइए ये भी सुन ले, मुहर्रमुल हराम ही है कि 10वीं तारीख को अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ऐन फजर की नमाज में नमाज पढ़ा रहे थे, दुश्मन ने आप पर हमला किया, आप पर खंजर का वार किया और आप शहीद हो गए। दो तीन दिन के बाद आपको शहादत मिली, आप अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए और ये मुहर्रम का महीना था। बेशुमार शहदा इस्लाम में पैदा हुए। मैदान उहद में जाइए जहां सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने शहादत पाई है। उन 70 सहाबाए किराम में सैयद शहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला उन्होंने शहादत पाई। उनकी शहादत का वाकया इतना दर्दंगेज है और इतना दर्दनाक है, दुश्मन ने या हिंदा औरत ने उनके जिस्म को चीरा, कलेजा निकाला, चबाया और के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए। ये सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो का वाकया है। आपको इतना रंज हुआ, इतना गम हुआ कि आपने उनकी लाश और अपने जिस्म मुबारक को देख कर फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं इनके मेरे चचा हजरत हमजा के जिस्म को वैसे ही छोड़ दूं, फाड़ खाने वाले दरिंदे और परिंदे इसके जिस्म को नोच नोच करके ले जाए और कल कयामत के दिन उनके जिस्म का एक एक हिस्सा बारगाह इलाही में हाजिर किया जाए और उसको वो मर्तबा अता किया जाए जो शहदा के सरदारों को अता किया जाता है। बड़ा गुस्सा आया और आपने ये भी फरमाया कि मैं एक हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ये शहादत पर जी चाहता है कि मैं इसके एवज में, इसके बदले में 70 आदमियों को, काफिरों के 70 आदमियों को मार दूं, खत्म कर दूं। बहुत ही गुस्सा आया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह गुस्सा देखा तो इरशाद फरमाया, वइन आकबतुम फआकिबू बिमिस्लि मा उकिबतुम बिह वलइन सबरतुम लहू खैरुल लिस्साबिरीन। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अपने चचा का बदला लेना चाहे तो एक आदमी के बदले एक ही आदमी को कत्ल किया जाए, लेकिन हमारा इरशाद है इस आप सबर कर लीजिए। वलइन सबरतुम, अगर आप सबर कर लेंगे तो ये सबर सबसे बेहतर चीज होगी। इसी तरह से सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, जिन नुहेल का खिताब पाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां एक ही बात देकर आपके निकाह में आई। इसी मदीना मुनव्वरा में दुश्मनों ने आपके घर को घेर लिया, ऐन कुरान करीम की तिलावत के वक्त रोजे की हालत में दुश्मन ने उन पर वार किया और वार करके आपको शहीद कर दिया और खून के वो कतरे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के जिस्म के लिए करने वाले कुरान करीम की आयत पर गिरे, फसयफीकुमुल्लाह वहु समीउल अलीम। इसी तरह से हजरत अली मुर्तजा दामाद रसूल कलमल्लाहु वजहु के कूफा की जामी मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त जाते वक्त मस्जिद में दाखिल ही हुए थे, दुश्मन ने आप तलवार से वार किया और आप को शहादत का मर्तबा मिल गया। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासा है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भाई है, उन्होंने खिलाफत दस्तबरदारी करके खिलाफत का बोझ हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को सौंप करके मदीना मुनव्वरा आए। यहाँ भी किसी दुश्मन ने आपको जहर दिया और नवासे रसूल रजी अल्लाह तआला अन्हु जहर की वजह से शहीद हो गए और जन्नतुल बकी में उनकी कब्र बनी। इसी तरह से मैदान करबला में सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपके खानदान वालों ने शहादत पाई। इस शहादत के वाकयात मैंने एक नजर आपको बता दिए कि अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले के मकामात कितने बुलंद होते हैं। कुरान करीम ने बशारत सुनाई है, उसको मुर्दा मत कहो, जिंदा है और इनको अल्लाह तबार होता है अपनी शान के मुताबिक रिस्क रोजी देता है, शादाब व फरहा है। अल्लाह तबार अपनी नियमतों से उनको नवाजते हैं। दुआ करें कि रब्बुल आलमीन

0: शहदा इस्लाम जिन्होंने इस्लाम की खातिर बड़ी बड़ी भी कुर्बानियां दी और उन्होंने अपने खून की बहा करके इस्लाम के चमन को आबियारी दी और चमन को सींचा और शादाब बनाया। इसीलिए कहने वाले ने बिल्कुल सच कहा, ये वो शजर नहीं, यानी ये वो दरख्त नहीं, ये वो शजर नहीं जिसने पानी से गिजा पाई, सहाबा ने पिलाया खून और इसने परवरिश पाई। ये वो शजर नहीं जिसने पानी से गिजा पाई, सहाबा ने पिलाया खून और इसने परवरिश पाई। इस्लाम जुल्म के लिए नहीं आया, इस्लाम मजलूम बना, जालिम कभी नहीं बना। इस्लाम पर चलने वालों ने जुल्म सहे, बर्दाश्त किए, सब इस्तिकामत के साथ अपने दीन पर जमे रहे, लेकिन जुल्म कभी नहीं किया, मजलूम बने रहे। इस्लाम जुल्म सिखाने नहीं आया था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक दीन की हिफाजत करने के लिए अपनी कुर्बानियां देते थे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे और आज का जुमा सबको मुबारक हो। रब्बे करीम हम सबको अपने दीन पर चलने वाली जिंदगी नसीब फरमाए, उससे खातिमा नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक तआला आखिरी दम तक अपने दीन के लिए जानो माल की कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। वाहु दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: भी आप सुन रहे थे आज जुमा है प्रोग्राम में महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान। इस स्टेशन पर आज जुमा है प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर करीबन 9:30 बजे तक।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا

0: वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग को बरतर जात।
1: और रेडियो सुपरनिर्वाण ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमे प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 1701 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हर जुमे के दिन आपके लिए हम पेश करते हैं 9 से लेकर 9:30 बजे तक मरहूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए मजहबी कवालियां, ओल्ड विंटेज कवालीज आपके लिए हर जुमे के दिन 9:30 से लेकर 10 बजे तक। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान और ये है रेडियो।

किसी को दौलत दुनिया वो दी अदा कर दी, मरीज के लिए अल्लाह से दुआ कर दी, माफ़ वहले खता की कभी खता कर दी।

तमाम नबियों में इतना कोई करीब नहीं, हबीब खास है ये बात क्या अजीब।

यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हर जुमे के दिन आपके लिए हम पेश करते हैं 9 से लेकर 9:30 बजे तक मरहूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं, आपके खिदमत में पेश करते हैं हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए मजहबी कवालियां, ओल्ड विंटेज कवालीज आपके लिए हर जुमे के दिन 9:30 से लेकर 10 बजे तक। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान और ये है रेडियो 79 प्रिस्म।

अली उस्मान ने बड़े धूमधाम से दौलत भी कुछ लुटा दी मोहम्मद के नाम से। रुख्सत के वक्त आपने हाजिर किए गुलाम, हैरत से मोहम्मद हुए उस्मान से हम कलाम। क्या दिल में इरादा है कहो मुझसे नेक नाम, उस्मान ने फरमाया महबूबे सुल कलाम, एक एक कदम पे आपके

हजरत अली के पास न था कोई माल जर, फाके गुजर रहे थे हसन और हुसैन पर, रंजीदा एक गोशे में बैठे झुकाए सर, फरमाया फातिमा ने ये नसीब आन कर, क्या जिद करी है तुमसे मेरे दिल के चैन ने, क्या कोई चीज मांगी जनाबे हुसैन ने, फरमाया कोई चीज न मांगी हुसैन ने, मेहमान रसूल हजरत उस्मान गनी के थे, अस्हाबे नामदार भी थे साथ आपके, खाने तरह तरह के

गया वो शाहिदी को भरोसे भी खुदा के। जहरा ने कहा ये भी कहो मेरे बाप से, अस्हाबे ज़ीविकार के तुम साथ आइयो, बेटी के घर में शान से तशरीफ लाइयो। बोले अली मकान पे या मुस्तफा चलो, दावत अली के घर है रसूल खुदा चलो, महबूब हक के जाने अली मुर्तजा चलो। बुलवाया फातिमा।

कबूल की, खुश हो के बहुत आ गए घर मुर्तजा अली। बिनते रसूल सजदे मौला में झुक गई, रो रो के बारगाह इलाही में अर्ज की, दावत मेरे मकान पे शाहे खुदा की है, अब तेरे हाथ लाबरू शेरे खुदा की है। अल्लाह ने जिब्रील को ये हुक्म दे दिया, जन्नत से हर किस्म की नियामत को लेके जा, रख दे वहाँ दुआ जहाँ करती है फातिमा। जिब्रील आए लेके फरिश्तों का काफिला, जन्नत के खान फातिमा के घर में धर दिया, सारा मकान रह

जब बिनते मुस्तफा ने सरब ना उठा लिया, हर सिमते खाने खुल्द को देखा जो बरमला, बस लाख लाख शुक्र खुदा का किया आदा, होती थी शाम आ गए इतने में मुस्तफा, दिलवाए मुर्तजा ने शहे अम्बिया के हाथ, खाना सबों ने खाया हबीबे खुदा के साथ, अस्हाबे ज़िलकार भी मुँह देखते रहे, ये धूमधाम देख के हैरान रह गए, दुनिया से निराले ही थे खाने में जायके, मिलती है ऐसी नियामत नादा नसीब से, किस मुझे करूँ खुल्द की नियामत के तज़किरे, खुशबू थी उसमें ऐसी।

रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवालीस, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली।

0: और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। जागिए क्योंकि आसमान ने एक बार फिर से जागने का ऐलान कर दिया है। चिड़ियों ने एक बढ़िया सा म्यूजिक शुरू कर दिया है और आपकी खिड़की पर दस्तक दे रही है एक बेहद खूबसूरत और बिल्कुल ब्रांड न्यू सुबह। और मैं हूँ आपकी अपनी मॉर्निंग पार्टनर सताक्षी। आप सुन रहे हैं इस वक्त हम सबका फेवरेट शो It happens, एक नई सुबह और एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, आज का दिन आपकी जिंदगी की किताब का बिल्कुल कोरा पन्ना होने वाला है। इस पर क्या लिखना है ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगले 2 घंटे मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी कॉफी होगी या फिर कड़क वाली चाय भी हो सकती है, बॉलीवुड के बेहतरीन मॉर्निंग ट्रैक्स होंगे और वो गॉसिप होगी जो इस मॉर्निंग को, इनफैक्ट हमारे पूरे दिन को बढ़िया बना देगी। तो चलिए